0: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
1: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा।
0: GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकानी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए 2347-3241-230।
4: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड। अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे

0: आहे। निजामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
1: खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
2: अव्हांजे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे।
2: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 0371-1800-3920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
3: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
4: सुनते रहो GFM 90.4।
5: छा वहां पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहा आयो
6: तपोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
6: ऐं हा गोठन शहरन ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन।
5: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
6: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
5: 0331-252-5786।
6: जी हा 231-525-786
5: GFM रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

असांजे इस्लामाबाद में बि बरसाति तमामु घणी हले पई ऐं ॿिनि ॾींहनि खां टिनि ॾींहनि खां असांजे थर जे इलाइक़े में बि बरसाति तमामु घणी आहे। ज़िले मीरपुर ख़ास में बि तमामु बरसाति घणी आहे। अचण वञण जा रस्ता पंहिंजो अचण वञण लाइ उहे रस्ता कोन्हनि खे जिते माण्हू पंहिंजे ऑफिस में पंहिंजे ड्यूटी ते पहुची सघे या पंहिंजे कंहिं कारोबार में पहुची सघे। बहरहाल अलाह सी माफ़ कंदो, जिते बरसाति जी ज़रूरत आहे अलाह खे पारत आहे त उते वसाए। ऐं असां सभु दुआगो आहियूं पंहिंजे सिंधी माण्हुनि लाइ झांगड़नि लाइ त इन बरसाति में बि पंहिंजो ख़्यालु कयो, पंहिंजे ॿारनि जो, पंहिंजे माल मता जो, पंहिंजे बुज़ुर्गनि जो ख़्यालु कयो त जीअं बरसाति में को नुक़सान न थिए। ऐं हलंदड़ बरसाति दौरान जॾहिं जेका असांजी ट्रैफिक हले पई, सवारी हले पई, उहो बि हुनजो वधीक ख़्यालु रखनि, छो त बरसाति में हलंदे हलंदे किथे रोड ते वण किरी पवंदा आहिनि, किथे को अचानक रोड ते राति जे पहर में या ॾींहं पहर में को जानवर निकिरी पवंदो आहे, को ढो ढगो अची वेंदो आहे, नंढा ॿार रस्ते में किथे खेॾंदा आहिनि। त ड्राइवर हज़रात खे बि इहा गुज़ारिश आहे त पंहिंजो ख़्यालु कनि, हलंदड़ बरसाति में किथे हलंदड़ हवा में वण बि किरी पवंदा आहिनि त कोशिशि कयो। ऐं बरसाति जे हवाले सां ख़ूबसूरत नगमो आहे, अव्हां जे नाम पिया कयूं।

साईं मुंहिंजा, असांजे समाज में के किरदार अहिड़ा त अमर बणिजी वेंदा आहिनि जंहिंजी शख़्सियत, किरदार ऐं सलाहतनि जो चर्चो सालनि ऐं सदियुनि ताईं हर कंहिंजे चपनि ते पियो हूंदो आहे। उन हवाले सां समझा गुल जो इंसान सां तालुक़ु ॼमण खां वठी मरण ताईं आहे ऐं गुल नाव खणंदे ई ख़ूबसूरती ऐं ख़ुशबू जो अहसास फुटण लॻंदो आहे। ताज़ी तहक़ीक़ ज़मीन जे गोले ते लॻभॻ 3.5 लख अहिड़ा वण, वलियूं, बूटा या बूटियूं आहिनि जिन में गुल थींदा आहिनि। प्यार जे इज़हार लाइ अक्सर गुल जो इस्तेमालु कयो वेंदो आहे ऐं घोट जे मोड़नि खां वठी कुंवार जे गजरनि ताईं गुलनि जो इस्तेमालु थींदो आहे। गुलाब जे गुल खे गुलनि जो सरदार बि चयो वेंदो आहे। हिकु गुल खे हासिल करण लाइ न ॼाण त केतिरनि ई कंडनि सां मोहजणो पवंदो आहे। अव्हां खे ख़बर आहे त असांजे मुल्क पाकिस्तान में जेको गुल आहे, क़ौमी गुल आहे, उन खे गुल चमेली सॾियो वेंदो आहे। ऐं जेको गुल चमेली, जंहिंखे असां यास्मीन बि चयो वेंदो आहे, मूंखे असांखे पाण खे उन आहे जॾहिं असां कंहिं माण्हू जे मथां गुल छटींदा आहियूं। पर गुल छटण त सुठी ॻाल्हि आहे, पर जॾहिं गुल वरी हेठि पेरनि में किरंदा आहिनि त उन महिल असां सभिनी खे पाण खे डुख थींदो आहे त इहे गुल केॾी महिनत सां फुटा ऐं इन्हनि गुलनि सां केॾो प्यार कयोसीं। ऐं हिन वक़्तु उहे अहिड़ा माण्हू जेके ॾिसंदा बि न आहिनि, पर गुलनि खे लताड़ियूं हलिया वेंदा आहिनि ऐं जेको आहे सो गुलनि जो उनखे क़दुरु थींदो ई कोन्हे को। पर पोइ हर ज़बान मां इहा ॻाल्हि हूंदी आहे त गुल हवा में अहिड़ी तरह पिया लॾनि, को हा पियो करे, को न पियो करे।

0: It's 10 a.m. This time check is
1: brought to you by. खत्म कर रहा हूँ उस बाबत को मुआयदो मौजूद आए एटमी हथियारन जी खात में बाबत में मुआयदो तय थी वेंदो मुआयदो ये अगते वधन जो बेहतरीन रस्तो आए गाली नाकाम थी तो तकरार वधी के शिद्दत अख्तियार करे वेंदो आजाद कश्मीर के आम चूंडन में नवाज लीग मैदान मारे वही एक्वी तकन में सत्रह तकन जा गैर सरकारी गैर हतमी नतीजा अची वया नून लीग तेरह पीपी चैन सीटों से कामयाब मुस्लिम लीग नून जा उम्मीदवार मुस्तफा बशीर अब्बासी चौधरी मोहम्मद इस्माइल मोहम्मद हसन रजा मुरीद जावेद आमिर शाह शौकत शाह मोहम्मद यासीन अहमद रजा कादरी कामयाब एले पंद्रह कश्मीर वैली छते पीपीए जो अब्दुल माजिद खान 3,478 वोट खड़ी कामयाब आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस जो ख्वाजा मोहम्मद दिलावर 823 वोट खड़ी बे नंबर ते रहो आजाद कश्मीर जे वक्ती सदर पीपीएमएनए ते हमलो पीपी सरकार मुश्ताक शाह कतल पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की मज़ामत आजाद कश्मीर के वक्ती सदर चौधरी लतीफ अकबर ए पीपीएमएनए ते सलाहुद्दीन जुने जे ते हमलो थियो बिलावल भुट्टो जरदारी पारा एल एकटी में कत्ल थियल मुश्ताक शाह के वारसन से ताजियत इजहार बिलावल भुट्टो जरदारी चो तो पेरी रियासत के सदर चौधरी लतीफ अकबर ते हमलो ए पीपी कारकुन की शहादत से नून लीग की नियत वाज़ह थी वही है पीपीएमएनए सलाहुद्दीन के बाह में गोली हणी जख्मी कयो वयो गोली ताक

धमाको छह नालकारन समेत 15 जणा शहीद 10 जख्मी थी पिया। जरियन मूजिब आपघाती बम्बार थाने अंदर दाखिल थियण में नाकामी ते पाण खे धमाके सां उडाए छॾियो। पुलिस आपघाती बम्बार जी मुंडी हथ करे वरती। छुराती जांच मूजिब आपघाती बम्बार जी अफगान शहरी तौर सुञाणप थी। सदर आसिफ जरदारी, वजीर आजम शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो जरदारी ए बियन पारां वाक्य जी मज़ामत। सदर आसिफ अली जरदारी चयो त खैबर पख्तूनख्वा में कानून लागू कंदड़ इदारनि जूं कुर्बानियूं समूरी क़ौम लाइ फ़ख्रु जोगियूं आहिनि। वाक्य जी जांच करे ज़िमेवारनि खे कानून जे कटहरे में आंदो वञे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो आहे त दहशतगर्दी जे नासूर जे मुकमल ख़ात्मे ताईं असांजी जिदोजहद जारी रहंदी। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह जी सदारत हेठि बरसाती सूरतहाल खे मुंहुं ॾियण बाबति इजलास। वॾे वज़ीर, डिप्टी कमिश्नर, PDA में मकानी इंतिज़ामिया ऐं ज़िले इंतिज़ामिया खे अलर्ट रहण जी हिदायत। वॾे वज़ीर खे ब्रीफिंग ॾिनी वई त सिंध में बरसातुनि सबबि 8 ॼणा फौत ऐं 8 ज़ख़्मी थिया। हैदराबाद ऐं मीरपुर ख़ासि डिवीज़न में ईंदड़ ॾींहनि दौरान 20 खां 60 मिलीमीटर वधीक बरसातुनि जो इम्कान आहे। वॾे वज़ीर पारां उमरकोट जे गैर हाज़िर टाउन आफ़ीसरनि खे फौरी तौर मुअतल करण जो हुकुम ॾेई छॾियो। गैर क़ानूनी तौर तरसियल धारियुनि जी नेकालीअ लाइ SDP जो कराचीअ में एहतजाज। SDP कारकुननि रीगल चौक ते एहतजाज कयो। पुलिस कंटेनर लॻाए रस्ता बंदि करे छॾिया। अॻवाणनि चयो त धारियुनि जी लोध रुगो सिंध में ई आबाद आहे, छो ईअं पियो थिए? धारियुनि खे नेकाले ॾेई सिंध खे धारियुनि खां पाक कयो। कराचीअ में प्रिया कुमारी ऐं ॿियनि ॿारनि जे बाज़ियाबी लाइ सिंध हाई कोर्ट खां मार्च। प्रिया कुमारी एक्शन कमेटीअ जे सॾ ते सोणी पारस, आमिर नवाज़, वड़ाच ऐं ॿियनि जी अॻवाणीअ में मार्च कयो वियो। पुलिस कंटेनर लॻाए प्रेस क्लब जो रस्तो बंदि करे छॾियो। अॻवाणनि चयो त प्रिया कुमारीअ समेत गुम थियल ॿारनि खे बाज़ियाब करायो वञे। खानपुर भरिसां जतोई बिरादरीअ जे ॿिनि धिरनि में झेड़ो थी पियो। हिकु ॼणो मारिजी वियो। कच्छ जे ॻोठ हज़ारो कोश में जतोई बिरादरीअ जे ॿिनि धिरनि में झेड़ो थियो। फायरिंग सबबि नौजवान कांडेरो जतोई मारिजी वियो। मक़तूल नौजवान जे वारसनि चयो त जवाबदार भाउ खे बेगुनाह क़तलु कयो। 60 ढगियूं बि काए विया आहिनि। जवाबदार गिरफ़्तार करे इंसाफ़ कयो वञे। नंगर पार्कर में हद दख़लियूं ॼाणाए घर ड्राहिण ख़िलाफ़ कुली बिरादरीअ जे माण्हुनि जो धरणो। ॻोठ सुरांज ते रहवासी रवेनियूं ऐं पुलिस इंतिज़ामिया ख़िलाफ़ धरणो हयो। मुतासिरनि जो चवण आहे त ग़रीब पोरियत आहियूं, मुतबादिल रिहाइश ॾियण बिना बेघर करे ज़ुल्म कयो वियो आहे। घरनि जे ड्राहिण वारी कार्रवाईअ जो नोटिस वठी ज़िमेवारनि ख़िलाफ़ कानूनी क़दम खया वञनि।

आईबीए टेस्ट पास उम्मीदवारनि जा ऑफर आर्डर न मिलण ख़िलाफ़ मुख़्तलिफ़ शहरनि में एहतजाजी मुज़ाहिरा धरणा। कंबर में आईबीए टेस्ट पास जे जीएसटी ऐं पीएसटी उमेदवारनि मुज़ाहिरो करे धरणो हयो। पनो आकल में बि टेस्ट पास उमेदवारनि प्रेस क्लब अॻियां एहतजाजी मुज़ाहिरो करे सख़्त नारेबाज़ी कई। गढ़ी खेरो में 5 खां 15 ग्रेड वारे नौकरियुनि लाइ टेस्ट ॾींदड़ उमेदवारनि बि एहतजाज कयो। उमेदवारनि जो चवण आहे त देर सबब असांजो मुस्तक़बिल दाह ते लॻल आहे, उमिरि जी हद ख़तम थींदी पई वञे। टेस्ट पास करण बावजूद ऑफर आर्डर न ॾिना विया, नोटिस वठी ऑफर आर्डर जारी कया वञनि।

0: कराचीअ जे इलाइक़े शहीद मिलत रोड हिल पार्क वेझो मुबैना पुलिस मुक़ाबले में ॿ ॾोहारी मारिजी विया। शेरपाउ कॉलोनी ऐं डिफेंस।
1: आप सुन रहे थे जीएफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज़।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230 कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
2: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ॿार जो न थियण बांझपन
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842
3: खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
3: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे
4: अव्हां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
5: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4
6: छा वहां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
7: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
7: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
6: बसि पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
6: 03132525786
7: जी हा 2315525786
6: GFM रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़

साईं मुंहिंजा इंसान जॾहिं पंहिंजे ख़ूबसूरत खे वधाइण जी पहिरीं कोशिश कई हुई त हुन वणनि जे पननि या गुलनि सां हार ठाहिण शुरू कया ऐं हुन मिटीअ जूं चूड़ियूं ठाहे सुकाए पंहिंजे हथनि में पाइण शुरू कयूं हुयूं। उन वक़्तु उहे बेडोलियूं हूंदियूं हुयूं जेकी पोइ आहिस्ता आहिस्ता ख़ूबसूरत थींदियूं हुयूं ऐं मशहूरु लेखक पंहिंजो लेखकनि चयो आहे त मोहन जे दड़े में हिकु अहिड़ी मूर्ति मिली जंहिंजी गीचीअ में हार ऐं बाहनि में चूड़ियूं पतल आहिनि। सिंध जे क़दीम खंडरनि मां मिलियल चूड़ियुनि जे नमूने पटीदार गोल ऐं सनड़ियूं मोटियूं ऐं मोतियुनि वारियूं चूड़ियूं शामिल आहिनि ऐं साईं जा अहिड़ियूं चूड़ियूं सिंध जे क़दीम तहज़ीब जो हिसो रहियूं आहिनि। मिटीअ मां ठहंदड़ उहो इहे ज़ेवर पोइ चंदन

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जिल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानू सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
7: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM
8: 90.4। पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
3: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
8: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राब्तो कंदा
8: 03125257 86
3: जी हाँ 2315 5786
8: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
2: सुनते रहो GFM 90.4।
3: अस खुद सुकून ऐं राहत महसूस कंदो ऐं ज़रूरत उन ॻाल्हि जी आहे त इंसान जे दिल में इंसानियत वारो दर्द हुअणु घुर्जे। इन ई जज़्बे तहत ई माण्हू इंसान ज़ात जी ख़िदमत करे सघंदो ऐं इंसान ज़ात जी ख़िदमत करणु बि इबादत आहे, छो त हक़ीक़त आहे त माण्हू वसहार पाड़े जा हक़ बि आहिनि ऐं पंहिंजनि जा हक़ बि आहिनि, त दोस्तनि जा हक़ बि आहिनि, यतीमनि मिसकिननि जा बि हक़ आहिनि ऐं उन जा हक़ अदा कंदो ऐं अहिड़ो मज़ो वठी ॾिसो ऐं अहिड़ो सौदो अलाह सां करे त ॾिसो त उन इंसानियत में केॾो मज़ो आहे।

जी आसमिन प्रोग्राम रोशन सुबह में सां सवाल पुछियोसी एटीएम जो फुल फॉर्म छा है यानी एटीएम द शॉर्ट फॉर्म आहे यानी उन फुल असल नालो या सजो नालो उन जो केड़ो आहे त असांजे जो के सवाल जो सही जवाब हो त ऑटोमेटिक टेलर मशीन। जी हाँ तमाम आसान सवाल हो जो दोस्त ने बुधायो आहे ऑटोमेटिक टेलर मशीन आहे जंहिंमां असां बैंक मां वञी करे पैसा पाण कढंदा आहियूं कंहिं बि चेक भरण जी ज़रूरत न पवंदी आहे ऐं बैंक जे खुलण जो ऐं ऑफिस टाइम जो कोई बि पंहिंजो वक़्तु न हूंदो आहे कहिड़े वक़्त बि 24 कलाकनि में असां मशीन मां एटीएम मशीन मां असां पैसा कढींदा आहियूं। त एटीएम मशीन जो फुल फॉर्म जेको आहे सॼो नालो जेको आहे ऑटोमेटिक टेलर मशीन आहे। त असांजे काफ़ी दोस्तनि सवाल जो सही जवाबु ॾिनो आहे उन मां असांजो पहिरें नंबर ते। जी हा बिल्कुल असांजे पहिरें नंबर ते असां जेको दोस्त सही जवाबु ॾिनो आहे अज़ीज़ सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां असांखे पहिरें नंबर ते सवाल जो सही जवाबु ॾिनो आहे। उन सां गॾु आहे भुट्टो सोलंगी नूर अहमद सोलंगी ऐं बाद में जिन दोस्तनि असांखे सवाल जो सही जवाबु ॾिनो आहे उन में मीरपुर ख़ासि खां ई ख़ालिक लाशारी आहे ऐं मीरपुर ख़ासि खां यासमीन मलिक आहे ऐं मीरपुर ख़ासि खां इक़बाल लाशारी आहे ऐं आसिफ अली चाचड़ आहे वासिफ अली बुगटी आहे लाड़काणे खां ऐं ताज मोहम्मद ख़ासि केली आहे हुमा ख़ासि केली मीरपुर ख़ासि खां जंहिं सवाल जो सही जवाबु नाहे ॾिनो ऐं मसूद जमाली सखर खां हुन सां गॾु आहे फारूक अहमद जावेद जमाली फ़क़ीर महरम जतोई ॻोठ आगा खान जतोई खां ज़ोहेब कटबर लाड़काणे खां सोहराब मंगरियो असांजो आहे ॻोठ सचेरणो मंगरियो लॻे बकापुर खां नूरसेन तुनियो बदीन खां मोहम्मद खान कुंभार वफ़ा जमाल कुंभार मीरपुर ख़ासि खां ऐं मोहम्मद अज़ीज़ जरवार आहे मीरपुर ख़ासि खां क़ुर्बान ख़ासि केली झंडोमरी खां हुन बि चयो त मूंखे सवाल जवाबु कोन पियो अचे ऐं हाफ़िज़ नईमुल्ला पनवाकिल खां हबीब लाइ थेबो ॻोठ मोहम्मद तैयब ॻोठ खां असद लाइ चांडियो मोहम्मद आलम चांडियो ॻोठ मीराणी चांडियुनि खां दोस्तनि जी वॾी महिरबानी जिन कोशिश कई जिन कोशिश न कई त हुनखे सवाल जो सही जवाबु न आयो जिन कोशिश कई त हुनखे सवाल जो सही जवाबु आयो पर पहिरें नंबर ते असांजो भाउ अज़ीज़ सोलंगी मीरपुर ख़ासि खां सही जवाबु ॾिनो दोस्तनि जी वॾी महिरबानी। ॻोठ मोलिण माशी लॻे वॾनि मरण खां ज़मीर हुसैन सोलंगी मुख़्तार अली सोलंगी ज़हीराबाद सोलंगी नंढड़ो वफ़ा हुसैन सोलंगी ॻोठ कंगन खां गुलाब खान कुंभर शोएब अली ऐं गुलाम रसूल कुंभर ॻोठ अहमद खान लाशारी खां नियाज़ अली लाशारी नंढड़ो शाहज़ेब लाशारी ॻोठ हसू जतोइन खां मोहम्मद मूसा जतोई यार मोहम्मद ऐं नसरुल्ला जतोई ॻोठ मोहम्मद कासिम चांडियो खां अली अकबर चांडियो मोहसिन अकबर अहसन अकबर फहद अकबर अहद अकबर ऐं शादाब चांडियो ॻोठ छुटो मक्सी लॻे कंगन खां सिकंदर अली मक्सी अकबर खान मक्सी नारा स्टॉप सखर लॻे सब्ज़ी मंडी खां एजाज़ अली जूणे जो मुनीब रहमान ऐं मुजीब रहमान जूणे जो यारमंद कलोड़ा कॉलोनी लाड़काणे खां फौजी इरशाद महेसर एजाज़ अली कलोड़ो डॉक्टर रिज़वान अली कलोड़ो माजिद अली जतोई ऐं निसार अली जतोई। त साईं मुंहिंजा दोस्तनि जी वॾी महिरबानी आख़िरी कलाम आहे दोगानो आहे ममताज़ मोलाई जो गॾिजी पिया ॿुधूं सभिनी जे नाम पिया कयूं।

यसमिन ममताज मोलाई जी दोगाने ते प्रोग्राम रोशन सुबुह जो वक्त पहुंचे पे पांजे बुजानी ते हयाती रही तवां सां मुलाकात जरूर थींदी तेसि ताईं पांजे मेज़बान नेमतुल्लाह जुणी जो खे ॾींदा इजाज़त अलाह निगाहबान।

गैर हतमी नतीजा अची वया। नून लीग 13 ऐं पीपी 5 सीटनि ते कामयाब। मुस्लिम लीग नून जा उम्मीदवार मुस्तफ़ा बशीर अब्बासी चौधरी, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद अहसन रज़ा, मरियम जावेद, आमिर शाह, शौकत शाह, मोहम्मद यासीन, अहमद रज़ा कादरी कामयाब। एल ए 45 कश्मीर वैली 6 ते पीपी जो अब्दुल माजिद खान 3,448 वोट खणी कामयाब। आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो ख्वाजा मोहम्मद दिलावर 823 वोट खणी बे नंबर ते रहियो।

अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त जानी नुक़सान न थियो चाहियां, तंहिं करे हमला रोके ॻाल्हियूं शुरू कयूं आहिनि। अॼु मंझंदि जो है ईरान सां ॻाल्हियुनि जो सिलसिलो ॿीहर शुरू थी वेंदो। ॻाल्हियूं राब्ता फ्रेमवर्क तय थी रहियूं आहिनि। ईरान ॻाल्हियुनि जे मेज़ ते न अचे हा त अहिड़ो हमिलो कयूं हा जेको ॿियों महाभारी जंग खां पोइ वॾो हमिलो हुजे हा। सऊदी अरब, मुतहदा अरब इमारात, कतर ऐं ईरान जी दरख़्वास्त ते हमला रोके आबन हरमुस बाबति हिकु मुआदो मौजूद आहे। हाणे एटमी हथियारनि जे ख़ात्मे बाबति बि मुआदो तय थी वेंदो। जंग जे ख़ात्मे लाइ मुआदो ई अॻिते वधण जो बहितरीन रस्तो आहे। हिन भेरे ॻाल्हियूं नाकाम थियूं त तकरार वधीक शिदत इख़्तियार कंदो। बरतानवी ख़बरू इदारे मूजिब तेहरान ऐं वॉशिंगटन विच में ॻाल्हियूं तमामु जल्द शुरू थियण जो इम्कान। ईरान, पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब जे इख़्तियारनि जो बि हिक ॿिए सां टेलीफोनिक राब्तनि जो सिलसिलो जारी आहे। ईरानी सरकारी मीडिया मूजिब ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास इराकची, सऊदी परडे॒ही वज़ीर ऐं ॿियनि फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर विच में राब्ता थिया आहिनि। मेहड़ मां पुरसरार नमूने गुम थियल ॿिनि भेनरुनि जो पतो न पियो। वारसनि पारां अगवा जो शक ज़ाहिर। बिस्मिल्लाह कॉलोनीअ मां 20 वरनि जी लाइबा ऐं 18 वरनि जी रज़िया बिरोही 3 ॾींहनि खां पुरसरार नमूने गुम आहिनि। नियाणियुनि जे वालिद जो चवण आहे त पुलिस नियाणियुनि जी ॻोल्हा में संजीदा नाहे। नियाणियूं ॻोल्हे परेशानी ख़तम कई वञे। चक भर सां हथियारबंदनि जे खैरपुर वासीअ खां फुर जी कोशिश। हिकु जवाबदार सोगो ॻोठ नापर वटि चक जहान खान रोड ते पुलिस हिकु जवाबदार गाड़ो जतोई खे सोगो करे वरितो। फुर थियल मोटरसाइकिल बेहथ, संदसि साथी फरार।

असांजी मंजिल लखन करोड़न विखुन खां परते सदन जे पंध ते अञा बे अॻिते कॾहिं न थक।

0: सांची मंजिल लखन करोड़न लखन संपत्ति।
1: सिंधी बोलिए जी सब का वडी ए मकबूल तरीन अखबार रोजानी कावस जी अज 36 सालगिरह मलाई पई वने। सिंध जे पानी जो मसलो हुजे या वसीलन जी मालकी जो रोजानी कावस शहर मैदान में अकबरी रांदी पाण मलायो। रोजानी कावस साफत में नवा लाड़ा मुतारिफ कराईंदे सिंधी साफत के जदी तेज ए बाएतमाद बनाने में तारीखी किरदार अदा कयो। रोजानी कावश पंहिंजी शानदार ऐं बेबाक साफ़त जा 36 साल कामयाबीअ सां मुकमिल कया। सदाई मिसकीन ऐं बेपोच माण्हुनि जे हक़नि ऐं ज़ुल्म नाइंसाफ़ी ऐं बेवाजिबियुनि ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उथारींदी रही आहे।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध का है ये मुनफरिद एजाज, तहजीब की रखवाली और मेहमान नवाज। GAFM 88 नेटवर्क,
2: सिंध की आवाज।
3: खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
8: ख़ुशख़बरी, अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में अव्हां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GFM 90.4।
4: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिक अहिड़ो FM रेडियो आहे
4: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
4: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तियार हलायण लाए
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
4: 03125252786
7: जी हाँ 2315525786
4: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।

पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को, चाहत से पता करते हैं लोगों के दिलों को। हम ऐसे सिकंदर हैं जो लश्कर नहीं रखते। अस्सलामुअलैकुम। यू आर ट्यूनिंग इन टू रियो रेडियो FM 88 और साथ ही साथ प्यारा सा चेहरा, मीठी सी आवाज, मासूम से दिल, स्वीट सी हंसी, परफेक्ट पर्सनैलिटी, खुश मिजाज अंदाज, मुझे कहते हैं आरजी रुखसार सिंध की आवाज। हाउ आर यू, कैसे हैं आप? आई होप सो गुड। जी जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल टिप टॉप सर्कुल एक साउंड एकदम स्ट्रांग हेल्थ के साथ मुझे सुन रहे हैं। जहां जहां भी मौजूद है बिल्कुल मेरे साथ साथ मौजूद है और मेरा पूरा साथ देने के लिए पूरे तैयार हैं, पूरे एक बजे तक आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है। देखिए आप सुनते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे फ्रॉम 11 to 1 PM आपका मेरे साथ रहता है और ये खूबसूरती बड़ा खूबसूरत से साथ जो कि आज भी जारी हो सारी रहेगा पूरे एक बजे तक।

इसके अलावा वो हम जो भी बीमार हैं उनको कहेंगे गेट वेल सून, वो लोग जो लाइफ में कुछ अच्छा कुछ बेटर कुछ बड़ा कुछ यूनिक कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो उनको कहेंगे विश यू वेरी वेरी बेस्ट ऑफ लक। बहुत सारी बेस्ट विशेज आप लोगों के लिए कि आप अपने हर काम में कामयाब होते रहें, आमीन। इसके अलावा मेरी आवाज जिन गलियों और शोबारों शहरों और शराहों वादी और पहाड़ों दुनिया और गुजारों घरों और बाजारों छोटी बड़ी कारों मेरे परस्तारों या करोड़ों हजारों में सुनी जा रही है, तमाम सुनने वालों को चाहने वालों को मोहब्बत करने वालों और नफरत करने वालों को भी दिल से कहेंगे मरहबन बिकुम अहलन व सहलन मरहबा बखैर आगे ले जी आया नू सब बिस्मिल्लाह बोंजोर शाओ नी हाओ एंड वेलकम इनटू जिंदगी गुलजार है। हमेशा की तरह बहुत कुछ है सुनने को सुनाने को समझने को समझाने को सीखने को सिखाने को बोलने को बुलवाने को और वो सारी बातें जो कि आप मुझसे करना चाहते हैं वो सारी बातें हम आपसे करेंगे। लेकिन उससे पहले प्रोग्राम में इंक्लूड करेंगे प्रोग्राम का पहला गाना और प्रोग्राम का पहला गाना जो हम इंक्लूड करने जा रहे हैं वो होगा बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल। तो सुनेंगे एंजॉय करेंगे आगे चलेंगे और आपको बताएंगे कि हम क्या कर रहे हैं। स्टे ट्यून्ड जिंदगी गुलजार है।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: तो मेरा फैन।
1: व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी, आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230।
4: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
9: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 0331252576।
4: जी हा, 3135525786।
9: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

Okay, Ji, thank you so much, Allah Hafiz, aur ye raha aapka gana.

0: साथ साथ हम नेक्स्ट कॉलर भी लेते हैं और चेक करते हैं कि जी कॉलर कहाँ से. और हेलो
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम. कौन कहाँ से?
1: आपसे पहले कहते लॉकडाउन आप बात कर रहा हूँ. आप सुनाए दादी कैसे हो?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ. मुझे बताइएगा कि गाना सुनाएंगे?
1: गाना नहीं, एक मिनी नगमा है पाकिस्तान के हिसाब से, ये सुना रहा आपकी मेहरबानी होती.
0: ओके जी सुना दें.
1: तुम भी पाकिस्तान हो, माँ भी पाकिस्तान है, ये सुनाओ आपकी मेहरबानी होती. अल्लाह आपको सलामत रखे.
0: चलिए जी मैं बिल्कुल सुनाती हूँ. और कुछ कहना है?
1: आपका शो जबरदस्त है, आपका यही सुनता हूँ.
0: चले जी थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखें अपना. और इसी के साथ हम गाना प्ले कर रहे हैं, मैं भी पाकिस्तान हूँ तू भी पाकिस्तान है. एंड इसको सुनेंगे, इंजॉय करेंगे और आगे चलेंगे. स्टे ट्यून्ड.

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
3: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
4: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
6: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310 31 43 842।
2: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

बल बल पढ़न दे यार सजन दी हूं दिसा कु जुदाई मुस्लिम विचों का।

0: किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं?
1: ये अली उमर का मेरे दोस्त चौक भी रहे मेरी असल की आवाज का, और मैं कहता हूँ कि वो मैं मुझे बहुत याद करते हैं आप प्रोग्राम में विदू, और अल्लाह आपको खुश रखे, ऐसी आवाज और ऐसी सारी सी हमारी आत्मा बहुत खुश रहे और मैं बहुत याद करते।
0: ओके जी, अल्लाह हाफिज। ये रहा आपका गाना।

0: ओके जी, एक और कॉलर लेने जा रहे हैं, चेक करेंगे कॉलर कहाँ से. जी हेलो.
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम.
0: वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से?
1: जी मैं वकार जतोई.
0: वकार जतोई, गाना सुना दे. कॉल ड्रॉप हो गई वकार जतोई की. 03000113488. एक और कॉलर. हेलो. ओके हेलो.
1: हेलो,
0: वालेकुम अस्सलाम, प्रोग्राम सुन रहे हैं, कौन बात कर रहे हैं? सॉरी,
1: अक्सर बोल रहे थे.
0: ओके, प्रोग्राम सुन रहे
1: हैं
0: तो गाना सुनाएंगे.
1: जी बिल्कुल,
0: तो सुना दें.

अमेरिका ईरान जी ॻाल्हियुनि खां पहिरियों पाकिस्तान सऊदी अरब मुतहरिक सऊदी अरब जे परडे वज़ीर जो ईरानी हमनसिब अब्बासी इराक सां फोन ते राब्तो खिते में जारी चिकताण जे ख़ात्मे लाइ सिफारती कोशिशनि ते ज़ोर भरियो। ज़रियनि मूजिब ईरानी परडे वज़ीर अब्बास इराक जी फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां बि ॻाल्हि ॿोल कई आहे। मेहड़ मां पुरिसरार नमूने गुम थियल ॿिनि भेनरुनि जो पतो न पियो। वारसनि पारां अॻवा जो शक ज़ाहिर। बिस्मिल्ला कॉलोनीअ मां 20 वरनि जी लाइबा 18 वरनि जी रज़िया बिरोही 3 ॾींहनि खां पुरिसरार नमूने गुम आहिनि। नियाणियुनि जे वालिद जो चवण आहे त पुलिस नियाणियुनि जी ॻोल्हा में संजीदा न आहे। नियाणियूं ॻोल्हे परेशानी ख़त्म कई वञे। चक भरसां हथियारबंदनि जे खैरपुर वासीअ खां फुर जी कोशिश। हिकु जवाबदार सोघो ॻोठ नापर वटि चक जहान खान रोड ते पुलिस हिकु जवाबदार गाड़ो जतोई खे सोघो करे वरितो। फुर थियल मोटरसाइकिल बि हथ संदसि साथी फरार। पुलिस चयो आहे त गिरफ़्तार कयल जवाबदार खां जांच जारी आहे।

0: थो कदम न थकबो असांजी मंजिल लखन करोड़ विखुन खां परते।
1: ऐं सिंधी ॿोलीअ जी सभ खां वॾी ऐं मक़बूल तरीन अख़बार रोज़ानी कावस जी अॼु 36 सालगिरह मल्हाई पई वञे। सिंध जे पाणीअ जो मसलो हुजे या वसीलनि जी मालिकीअ जो, रोज़ानी कावस हर मैदान में अॻुभरी रहंदे पाण मल्हायो। रोज़ानी कावस सावत में नवां लाड़ा मुतारिफ़ कराईंदे सिंधी सहाफ़त खे जदीद, तेज़ ऐं बाएतमाद बणाइण में तारीख़ी किरदार अदा कयो। रोज़ानी कावस पंहिंजे शानदार ऐं बेबाक सहाफ़त जा 36 साल कामयाबीअ सां मुकमिल कया। सदाई मिसकीन ऐं बेपोच माण्हुनि जे हक़नि ऐं ज़ुल्म, नाइंसाफ़ी ऐं बेवाजिबियुनि ख़िलाफ़ भरपूर आवाज़ उथारींदी रही आहे।
2: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
3: अजरक के रंगों से रंगी,
4: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
3: सिंध के दिल से निकली आवाज,
4: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
7: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितियूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
9: ख़ुशख़बरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
10: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
9: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
9: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
10: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
9: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
10: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
5: छावा पेंजे कारोबार जी तरक्की लाए सोचे रहया आयो
7: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन एक एड़ो FM रेडियो आए
5: जेको हले तो बिना ब्रेक ए मुसलसल
7: आई हां गोठन शहरन ए परे परे ताई बुधो विंदड़ रेडियो GFM मातली बदीन
5: बस पो हाने खणो फोन ए पेंजे इश्तियार हलाण लाए
7: असा जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सा हिन नंबर ते राबतो कंदा
5: 0331252576।
7: जी हाँ बुड़ी 361 5 5 786
5: GFM रेडियो नेटवर्क
7: सिंध जो आवाज़।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं कॉल्स के थ्रू, मैसेजेस के थ्रू और कमेंट्स के थ्रू जो कि आप लोग कर भी रहे हैं. तो जी कमेंट और मैसेजेस आप लोग कर सकते हैं जो कि आप लोग कर रहे हैं, साथ साथ आप लोग मुझे कॉल कर पाएंगे. हमारा अगला सेगमेंट जो कि है बोलो तो माने, और बोलो तो माने में आप लोग कहेंगे एक अदर टंग ट्विस्टर और

0: तो जी आज का जो टंग ट्विस्टर है वो कुछ इस तरीके से है कि आप लोग मुझे कह के दिखाएंगे कवल ने कच्चे कद्दू के कबाब कमाल बनाए, कवल ने कच्चे कद्दू के कबाब कमाल बनाए, ठीक है ये कहेंगे। 03000013488 के ऊपर आप लोगों की बहुत सारी लाइव कॉल्स को एंटरटेन किया जाएगा, ठीक है। जी नेक्स्ट नहीं सॉरी फर्स्ट कॉलर इस सेगमेंट के, हेलो
1: अस्सलाम वालेकुम या अली मदद।
0: वालेकुम अस्सलाम।
1: कितने हसीन लोग थे कि जो मिलके एक बार कितने हसीन लोग थे जो कि मिलके एक बार अरे आंखों में जज्ब हो गए और दिल में समा गए। ये एहसास का रिश्ता है बंदा नाचीज को अल्ताफ बलोच कहते हैं और जाग जानी का सलाम है मोहब्बत कबूल हो।
0: वालेकुम अस्सलाम। जाग जानी अंकल कैसे हैं, ठीक ठाक हैं?
1: मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह आपकी दुआओं के साथ परफेक्ट अल्लाह की जात है। आपकी दुआएं हैं कि ये दिल मेरा था बादशाह गुलाम कैसे हो गया, ये दिल मेरा था बादशाह गुलाम कैसे हो गया, ये धड़कनों में आपका कयाम कैसे हो गया।
0: वाह।
1: किताब इश्क ने जिसने उम्र भर कभी पढ़ी न थी, किताब इश्क जिसने उम्र भर पढ़ी न थी, नमाज इश्क में वो दिल इमाम कैसे हो गया।
0: वाह।
1: ये चश्मे मोतबर थी जेरे आप कैसे आ गई, खलिस सी दिल में आप ही का नाम कैसे हो गया। खुदा तो खुद हसी है जो चाहता है हुस्न को, खुदा तो खुद हसी है जो चाहता है हुस्न को, तवाफ हुस्न इश्क में हराम कैसे हो गया। भुला चुके थे दोस्त हम तेरी सभी तनाइयां, फिर आज शाम गम का एहतमाम कैसे हो गया। और बशीर बदर कहता है कि उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस घड़ी जिंदगी की शाम हो जाए। अपने अल्ताफ बलोच जाग जानी का सुनने वालों को सलाम मोहब्बत और पंतर पात आपको के साया में रहो, जो मांगो आपको मिल जाए बेटा।
0: थैंक यू सो मच जाग जानी अंकल, अपना बहुत सारा ख्याल रखें और बहुत यूनिक और लेटेस्ट किस्म की पोइट्री लेकर आते हैं हमेशा। और जी 03000013488 के ऊपर आप लोगों की लाइव कॉल्स को रिसीव किया जा रहा है। सो आज का जो टंग ट्विस्टर है वो देखते हैं कि कौन अच्छा अच्छा कह पाता है। सो नेक्स्ट कॉलर हेलो। ओके जी कॉल ड्रॉप हो चुकी है। तो 03000013488 के ऊपर आप लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और कॉल करने के बाद मुझे कह के दिखा रहे हैं एक अदद टंग ट्विस्टर, ठीक है। टंग ट्विस्टर बोलेंगे और जब आप टंग ट्विस्टर बोलेंगे तो होगा ये कि जो अच्छा अच्छा बोलेगा वो विन करेगा हमारे सेगमेंट को। हेलो
2: सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम सरदर्द, कैसी हो?
2: आप बताए कैसे?
0: मैं बहुत अच्छी हूँ। मुझे बताओ कि टंग ट्विस्टर सुनाओ बोलेंगी।
2: कवल ने कच्चे कद्दू के कबाब कमाल के बनाए, कवल ने कच्चे कद्दू के कबाब कमाल बनाए, कवल ने कच्चे कद्दू के कबाब कमाल बनाए, कवल ने कच्चे कद्दू के कबाब कमाल बनाए, कवल ने कच्चे कद्दू के कबाब कमाल बनाए, कवल ने कच्चे कद्दू के कबाब कमाल बनाए, कवल ने कच्चे कद्दू के कबाब कमाल बनाए, कवल ने कच्चे कद्दू के कबाब कमाल बनाए, कवल ने कच्चे कद्दू के कबाब कमाल बनाए, कवल ने
0: कच्चे कद्दू के
2: कबाब कमाल बनाए, कवल ने
0: कच्चे कद्दू के
2: कबाब कमाल। ओके
0: सांस फूल गया।

4011348 के ऊपर आप लोगों की लाइव कॉल्स को रिसीव किया जा रहा है. सो आज का जो टंग ट्विस्टर है वो देखते हैं कि कौन अच्छा अच्छा कह पाता है. सो नेक्स्ट कॉलर, हेलो. ओके जी, कॉल ड्रॉप हो चुकी है. तो 03000113488 के ऊपर आप लोग मुझे कॉल कर रहे हैं और कॉल करने के बाद मुझे क्या क्या दिखा रहे हैं, एक अदर टंग ट्विस्टर. ठीक है, टंग ट्विस्टर बोलेंगे और जब आप टंग ट्विस्टर बोलेंगे तो होगा

0: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार। सिर्फ दो दिन में डार्क स्पॉट्स को करे फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
5: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
4: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जी बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
5: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
4: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
5: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
6: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
7: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतुनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
4: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-3843-842।
8: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज, GFM 90.4।
3: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
6: त पोए GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
6: हाँ गोठन शहरन परे परे ताई बुधो वींदड़ रेडियो जीएफए मातली बदीन
9: बस पो हाने खणो फोन पेंजे इश्तिहार हलायण लाए
6: असां जे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
9: 03125252786
6: जी हाँ 2315525786
9: जीएफएम रेडियो नेटवर्क
6: सिंध जो आवाज़।

0: वेलकम बैक वंस अगेन. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार. आपको मेरे साथ पूरी पूरी एक बजे तक का है और आप लोग मुझे ज्वाइन कर रहे हैं कमेंट्स, मैसेजेस और कॉल्स के थ्रू. तो कमेंट्स और मैसेजेस की तरफ चलते हैं जो कि हम काफी देर से नहीं गए हैं. सो जी, हमें बहुत सारे मैसेजेस और कमेंट्स रिसीव होते जा रहे हैं. नूर हुसैन तुनियो ने हमें मैसेज किया है और कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम फ्रॉम बदीन सिस्टर रुखसार, गुड मॉर्निंग, हैव अ नाइस डे. इसके अलावा ताहिर लुंड, मोहम्मद ताहिर लुंड ने हमें कमेंट किया है खैरपुर मीरत से. आशिक खान स्केली हमें सुन रहे हैं. मोहम्मद ताहिर लुंड वंस अगेन, थैंक यू सो मच. और कहते हैं ये जी मोहम्मद ताहिर लुंड की जानिब से नूर हुसैन तुनियो, हलार, विशाल और खालिद जुनेजो को 14 अगस्त जश्न आजादी की दिल की गहराइयों से बहुत मुबारक हो. अभी दूर है, अभी मुबारकबाद फिर आप 14 अगस्त को दीजिएगा. अभी थोड़ी सी दूर है. हाँ, ये है कि अगस्त शुरू हो चुका है और आजादी की तरफ हम बढ़ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये है कि 14 अगस्त अभी दूर है. आज 3 अगस्त है, ठीक है. तो ये है और इसी के साथ हमारा सेगमेंट भी जो कंटिन्यू था, दैट इज बोलो तो माने. अच्छा, साथ साथ मेरे सामने एक गाना आया और ऐसा हो नहीं सकता कि कोई अच्छा सा गाना जो है मेरे सामने आया और मैं प्ले ना करूं. तो अच्छा सा गाना मेरे सामने आया है और मैंने कर दिया है प्ले.
1: प्लीज कम बैक, आई मिस यू.

0: रखे हो तो आवाज भी सिंसी है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड, मातली।
2: खुशखबरी खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
3: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
2: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
3: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
2: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
3: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे, अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
2: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
3: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
4: मातली के हो तो आवाज़ भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

You welcome back once again. आप सुन रहे हैं जिंदगी गुलजार है और मुझे कहते हैं आरजे रुखसार आपको मेरे साथ पूरे पूरे एक बजे तक का है और आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हैं कमेंट्स मैसेजेस और कॉल्स के थ्रू जो कि आप कर भी रहे हैं और आज का जो सेगमेंट रहा है जिसका नाम था बोलो तो माने और बोलो तो माने में आज टंग ट्विस्टर अच्छा अच्छा कह के दिखाया है जी सरदर्द ने हमेशा की तरह सरदर्द ने काफी अच्छा टंग ट्विस्टर कह के दिखाया।

0: लास्ट तक लकी कॉलर भी लेंगे 03000113488 के ऊपर. और चेक करेंगे कि लास्ट लकी कॉलर कौन है. हेलो,
1: अस्सलाम वालेकुम जानू मैम.
0: वालेकुम अस्सलाम मिसेस अली, कैसी हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ मेरी जान, आप कैसी हैं?
0: मैं बिल्कुल ठीक हूँ. आपकी आवाज़ को क्या हुआ है?
1: क्या हुआ है?
0: गला ठीक है आपका?
1: जी जी सारे अब ठीक है.
0: जी अब ठीक है. मुझे बताइए गा के प्रोग्राम सुन रही हैं?
1: हाँ जानू मैम, पहले मैं सुन रही थी, थोड़ा बिजी थी. तो अभी लास्ट लिंक सुनी.
0: चलें जबरदस्त. अच्छा मुझे बताएं कि आज की अच्छी बात क्या है?
1: जानू मैम आज की अच्छी बात ये कि अगर किसी को कुछ दे नहीं सकती तो दुख भी नहीं देना चाहिए.
0: चलें जबरदस्त जबरदस्त.
1: अल्लाह पाक
0: जी ओके जी, थैंक यू सो मच. बहुत सारा ख्याल रखें, आपकी आवाज में डिस्टर्ब.
1: आई लव यू जानी मैम.
0: जी जी जी बोले.
1: आई लव यू सो मच जानी मैम.
0: थैंक यू
1: जानी मैम.
0: ओके अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच. और इसी के साथ फाइनली हम लेंगे आपसे इजाजत. और जी लास्ट में हम गाना प्ले करेंगे अनूर अल खालिद का और इसको हम सुनेंगे. और जाते जाते वही बात कि ख्वाब देखने के लिए सोना जरूरी है और ख्वाब पूरे करने के लिए जागना उससे ज्यादा जरूरी हुआ करता है. लिव सिंपल बट थिंक हाई. सो दिस इज मी आरजे रुखसार, साइंस आउट. टेक केयर, गुड बाय, अमानी खुदा अल्लाह.

अमेरिका ईरान जे ॻाल्हियुनि खां पहिरीं पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब मुतहरिक सऊदी अरब जे परॾेही वज़ीर जो ईरानी हमनसिब अब्बास इराकचीअ सां फोन ते राब्तो। खिते में जारी चिकताण जे ख़ात्मे लाइ सिफारती कोशिशनि ते ज़ोर भरियो वियो। ज़रियनि मूजिबि ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराकची फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां बि ॻाल्हि ॿोल कई आहे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सां वर्ल्ड बैंक जे कंट्रैक्टर बलोरमा उमगा बाज़ार जी मुलाक़ात। ॿिनि ॿारनि जे वाद वेझ में रुकावट जे ख़ात्मे लाइ सिंध हुकूमत ऐं वर्ल्ड बैंक जो गॾियल हिकमत अमलीअ ते इतफ़ाक़। गिज़ायत, साफ़ पाणी, समाजी तहफ़ुज़ ऐं ज़राइत खे गॾियल फ्रेमवर्क हेठि आणण जो फ़ैसिलो। वॾे वज़ीर चयो त ॿारनि में गिज़ाई खोट इंसानी तरक़ी ॾाढो वॾनि चैलेंजेस मां हिकु आहे। ॿारनि जी गिज़ायत बहितर बणाइण लाइ गॾियल हदफ़ ऐं मज़बूत मॉनिटरिंग सिस्टम क़ाइम कयो वेंदो। मेहड़ मां पुरेसरार नमूने गुम थियल ॿिनि भेनरुनि जो पतो न पियो। वारसनि पारां अगवा जो शक। बिस्मिला कॉलोनी मां 20 वरनि जी लाइबा ऐं 18 वरनि जी रज़िया बिरोई टिनि ॾींहनि खां पुरेसरार नमूने गुम आहिनि। नियाणियुनि जे वालिद जो चवण आहे त पुलिस नियाणियुनि जी ॻोल्हा में संजीदा नाहे। नियाणियूं ॻोल्हे परेशानी ख़त्म कई वञे। शहरपुर में कारें इल्ज़ाम हेठि भाउ हथां टिनि ॿारनि जी माउ क़तल। मिल कॉलोनीअ में जवाबदार असद जांवरी साथियुनि सां गॾिजी पंहिंजी भेण टिनि ॿारनि जी माउ इरम ज़ाल अहमद अली जांवरीअ खे क़तल करे फरार थी वियो। औरत जे मुड़ुस अहमद अली जांवरी चयो आहे त संदसि ज़ाल कारी न हुई, खेसि बेगुनाह क़तल कयो वियो आहे। मेहड़ मां मुबैना तौर अगवा ॼाणायल टिनि सहेलियुनि अगवा जी तरदीद करे छॾी। अदालत में मर्ज़ी मूजिबि हैदराबाद ऐं मीरपुर खास वञण जो बयान ॾेई छॾियो। मुबैना तौर अगवा ॼाणायल शागिर्दियाणी रोशनी तेवणो 101 जे बयान में चयो आहे त मां फातिमा जांवरी ऐं तंज़ीला पंवर मेहड़ मां हैदराबाद विया हुआसीं, जितां पंहिंजे सहेलियुनि समेत दोस्त ॾांहुं मीरपुर खास वियासीं, जितां पुलिस हथ कयो। पुलिस इल्ज़ाम हेठि गिरफ़्तार कयल जवाबदार ज़ैन महर जी सुञाणप न कराई। लालू राय किवे जो हथियारबंदनि जे घर ते कहा। भातियुनि ते तशद्दुद, 30 लख रुपियनि जो धाड़ो। ॻोठ बख़्शल माछीअ में हथियारबंदनि रात देर सां अवे सोलंगी जे घर ते कहा कई। ॾोहारियुनि घर भातियुनि खे जर्गमाल बणाए तशद्दुद करे हिकु कमरे में बंदि करे छॾियो। हथियारबंद घर में पयल 15 लख रोक रक़म

0: तोला सोना जेवर ऐं ॿियो कीमती सामान खणी फरार थी विया। सख़्त गर्मीअ में औरतूं ॿारड़ा बंदि कमरे में दाहूं कंदा रहिया। पाड़े वारनि दर भञी खेर ॿाहिरि कढियो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
3: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
4: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
3: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
4: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
3: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
4: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
3: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
4: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
6: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
6: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां राति जो 10 बजे ताईं मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हीअ में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियण कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारड़नि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
7: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-3843-842।
9: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।
10: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो
7: त पोए GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
10: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
7: گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف ایم ماتلی بدین
10: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار لائن لائے
7: اسانجے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری سان ہن نمبر تے رابطو کندا
10: 0331252578 6
7: جی ہاں 3131525786
10: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
7: سندھ جو آواز

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, तुम्हारी उम्मीद मौजूदों के बादशाह से है, फिर क्यों परेशान हो, तुम्हारे पास तो अल्लाह है। संजब धुंधला तमाम खूबसूरत मासूम ही सोने समातम के बुझे तरफा अस्सलाम वालेकुम। दुआओं के समंदर से हाथों की बारिश लासवल खजानों के साथ दुआ है पल से पल तक, आज से कल तक, सुबह से शाम तक, दिन से रात तक, नीचे जगत कमी से आसमान तक, जिंदगी से मौत तक, सांस से तार तक, हमसे खुशी तक, दिल से दिल तक, जिंदगी के पहले दिन से जिंदगी के आखिरी दिन तक, अल्लाह ताला आप सबको और हम सबको हमेशा हमेशा हमेशा अपनी रहमतों और बरकतों के साए में सलामत रखे। सो आमीन या रब्बुल आलमीन। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं जीएफएम 88 नेटवर्क। हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो। प्रोग्राम है वाइट एश एंड डे स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से। अगर आप भी वाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप लोगों को बताया जाएगा कि आप अपनी खूबसूरती का ख्याल जो है वो किस तरह से रखें, ना सिर्फ अपनी खूबसूरती को बेहतर बना सकें बल्कि आप अपनी खूबसूरती हिफाजत भी कर सकते हैं। और वो कैसे जनाब, क्योंकि अक्सर औकात ऐसा हो जाता है कि हम अपनी खूबसूरती को बढ़ाने के चक्करों में ऐसे प्रोडक्ट के चंगुल में फंस जाते हैं जो कि भाई हम ना चाहते हुए भी इस्तेमाल कर पाते हैं, तो फिर ऐसा सीन बन जाता है कि आपकी स्किन जो है वो टोटली खराब हो जाती है। अगर आप भी ये वाला सीन नहीं चाहते अपनी जिंदगी के अंदर, आप चाहते हैं कि भाई कुछ ऐसा वाला सीन हो जाए कि हमारी जो स्किन है वो और ज्यादा खूबसूरत हो जाए और इसके अंदर कोई भी केमिकल भी ना हो, यानी कि जो भी आप प्रोडक्ट लगाएंगे वो केमिकल फ्री प्रोडक्ट हो, और उसके साथ साथ अगर आप लोग व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जानेंगे तो आप लोगों को बहुत चीजें अच्छे से मालूम हो जाएंगे कि व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो आपकी खूबसूरती के लिए क्यों जरूरी है। ओके जी, तो यहाँ पर प्रोग्राम में आप हमारे साथ मौजूद है, प्रोग्राम में आपका हमारा साथ रहता है। ठीक अब से लेकर पूरी पूरी 3 बजे तक मैं आपके साथ मौजूद रहने वाली हूँ। ये 2 घंटे आप लोगों के साथ हम बहुत ज्यादा वाली बातें करते हैं, बहुत ज्यादा वाली बातों में जो है वो आप लोगों के लिए जाहिर सी बात है व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स का जिक्र भी होता है। ओके जी, सो बहुत ज्यादा वाली बातें करेंगे लेकिन साथ साथ अपना भी तारीफ करवाते हैं। सो लिसनर्स फॉर रीजन टेक द मोस्ट ब्यूटीफुल फैंटास्टिक इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग कैरेक्टर योर आरजी एंड योर डीजी सिद्रा मुस्कान, नाम तो सुना ही होगा। तो बिल्कुल आपके सिद्रा आपके साथ मौजूद है और मेरे साथ कौन है मुझे बताएंगे जी, अपने होने का एहसास दिलाएंगे और साथ ही साथ अपने हाल चाल बताते जाएंगे। सो डियर लिसनर्स अंत कैफा हालत उनके से आपकी हालत और उम्मीद इन शदीदन के बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, सुपकुल मूड के साथ सुपकुल प्रोग्राम का इंतजार करे होंगे। तो आपके जो इंतजार की घड़ियां थी वो खत्म हो चुकी है और फाइनली यहाँ पर हमने एंट्रियां मारी ली हैं। आपको पता है जब हम एंट्रियां मारते हैं तो बहुत सारे लोगों के दिलों में घंटियां बजाते हैं, तो यकीनन आपके दिलों में भी घंटियां बजाएंगे। आपको बताएंगे कि आपका हमारा साथ पूरे 2 घंटों का, यहाँ पर बहुत सारे लोग हमारे साथ ऐसे मौजूद होते हैं जो कि अपने काम के दौरान हमें सुन रहे होते हैं, बहुत से लोग ऐसे जिन्होंने अपने सारे काम कर लिए यानी कि फ्री होकर हमारा इंतजार कर रही थी। ऐसी बहुत सारी आंटियां अम्मियां खालाएं बाजियां और पापा की परियां जो हमें किचन में सुन रही होंगी यानी कि लंच बनाने के दौरान, सुबह अपने काम भी कीजिए हमें भी सुनिए, आपको कहेंगे मेरी वाली गुड आफ्टरनून। साथ ही साथ अगर आप लोगों ने घर वालों के ताने सुनी लिए हैं तो जनाब अब जबरदस्ती गाने सुनने के लिए जरा रेडी हो जाइए क्योंकि आपके बोरिंग लाइफ में भरेगी चटपटा मसाला बिकॉज आली रे आली सदर आली बॉस आपके होंठों पर 440 हल्की समय लाने के लिए। तो बिल्कुल आपके होंठों पर 440 हल्की समय लाते हैं, यहाँ पर ऐसा करते हैं आगे से प्रोग्राम कर लेते हैं और आगे से प्रोग्राम करते हैं जी हम आज एक बहुत ही प्यारे से कसीदे के साथ। कसीदा सुनते हैं प्रोग्राम के स्टार्टिंग में, उसके बाद हम जैसे ही वापस आप लोगों के पास मुखातिब होते हैं तो बता दें कि आज के प्रोग्राम में आप लोगों के लिए क्या होने वाला है। बिल्कुल जी, आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। इस्तेमाल कीजिए और खूबसूरतियां हासिल कीजिए।

0: एलोवेरा
1: फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम 5-डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाएं, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट आरसीसी घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी। मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ़ ऐं शिफ़ाव पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे तो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
8: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।
9: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक्की लाइ सोचे रहिया आहियो?
10: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
9: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
9: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 0331252576।
4: जी हा, 3135525786।
9: GFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: के हो तो आवाज भी सिंक की है। GFM 88 नेटवर्क सिंक की आवाज।
1: जिंदगी गुजारियो एतमाद सा कुरान के समझी बुधंदा रहो। डॉक्टर फरहत हाशमी जो प्रोग्राम तालीमुल कुरान रोजानो सुबह 9:05 ते सिर्फ GFM 88 नेटवर्क ते।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।
3: ओ अज दर्द मुडे जानी आराम के रात।
1: ब्यूटी सोप व्हाइट एश ब्यूटी सोप सा मिले चमकदार निखार ताजगी सा गड। व्हाइट एश ब्यूटी क्रीम ग्लोइंग स्किन जो राज, अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।

पे जितने भी लोग हमारे साथ मौजूद है, पोस्ट को काइंडली लाइक और शेयर कर दिया करें। इसी के साथ साथ जो नंबर्स आप लोगों को प्रोग्राम के अंदर बताए जा रहे हैं, ताकि उनके ऊपर आप राबता करके अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो या फिर डे स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स को अवेलेबल करा सके, आपके लिए आसानी हो जाए, समझ रहे। तो जल्दी जल्दी से आप अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराइए। इसी के साथ साथ मैं जरा आप लोगों को बताने लगी हूँ, अगर आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स के इस्तेमाल से आप लोगों की खूबसूरती में किस तरह से इजाफा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों को सबसे पहली बात बता दी चलूं तो हर तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं, जैसे कि आप लोगों का दिल जो भी करे ना भाई, जो भी प्रोडक्ट आप लगाना चाहते हैं व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आपको हर तरह का प्रोडक्ट मिल जाएगा। सबसे पहले आप लोगों को जरा बताया जाए तो व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स में आप लोगों के लिए नाइट क्रीम भी है, एक्नी ट्यूब भी है, फेयरनेस क्रीम भी है, सोप भी है, फेस वॉश भी है, लोशन भी है और हेयर रिमूवल लोशंस भी हैं, जो कि तीन मुख्तलिफ फ्लेवर्स के अंदर मौजूद हैं। ओके जी, तो ये तमाम प्रोडक्ट जो कि आप इजीली कहीं से भी जाकर परचेज कर सकते हैं। ना मिलने की सूरत में जो नंबर आपको बताए जा रहे हैं उनके ऊपर आप राबता किया करें, ठीक है, राबते जो है ना वो बहाल रखा करें। और इसी के साथ साथ यहाँ पर अगर हम यहाँ पर जिक्र करें व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का, तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम एक नाइट क्रीम है नो साइड इफेक्ट्स के साथ साथ। अगर आप भी कोई भी नाइट क्रीम इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आता कि भाई कौन सी ऐसी नाइट क्रीम जो कि हमारे चेहरे पर सूट करेगी, तो आपके लिए व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम मौजूद है जिसके अंदर कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होगा जनाब। अगर आप अपने चेहरे पर अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो बिल्कुल आप इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम इस्तेमाल करने के बाद आपकी स्किन फ्रेश हो जाती है, फेयर हो जाती है और तमाम चीजों से प्रोटेक्ट हो जाती है, जैसे कि भाई आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा मसले आना स्टार्ट हो चुके हैं। आप टीनेजर्स हो, जैसे टीनेजर्स आप अपनी टीनेजिंग एज में आ जाते हैं तो आपके चेहरे पर एक्नीज आना स्टार्ट हो जाती है, आपके चेहरे पर इतने ज्यादा मोटे मोटे दाने निकलना स्टार्ट हो जाते हैं जिनको देखकर आप ये कहते हैं कि भाई ये दाने कैसे खत्म हो जाएंगे। और जब इन दानों को खत्म करने की बात आ जाती है तो फिर आप ये सोचते हैं कि हम डॉक्टर को दिखा लें या फिर डॉक्टर के पास आप चले जाते हैं तो डॉक्टर आप लोगों को इतनी महंगी महंगी सी दवाइयां देते हैं और इतना हैवी सा कोर्स दे देते हैं जिनको आप ट्राई करने के बाद यकीन जाने कि कुछ अच्छा खासा फर्क पड़ता नहीं है। अगर आप भी ये चाहते हैं कि भाई इन झमेलों में मत पड़ना है और आपने कुछ ऐसा इस्तेमाल करना है जो कि भाई लाइट वेटेड भी हो और आप लोगों की स्किन के ऊपर फायदा भी छोड़ जाए, तो बिल्कुल आपके पास व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद है। और अगर एक्नी की बात छिड़ ही चुकी है तो यहाँ पर डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आप लोगों के लिए मौजूद है। और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब ये भाई मेडिकेटेड फार्मूला है, यानी कि इसके अंदर जड़ी बूटियां ऐड की गई हैं, डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर इसे तैयार किया गया है। तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब आप लगाएंगे तो क्या आपके चेहरे के दाने खत्म हो जाएंगे, तो बिल्कुल जी आपके चेहरे के दाने खत्म हो जाएंगे। और ना सिर्फ आपके चेहरे के दाने खत्म होंगे बल्कि आपके चेहरे पर जो ये जिदी निशानात होते हैं, रिंकल्स होते हैं, कोई चोट का निशान है, कोई जलने का निशान है, कितना भी पुराना कोई भी निशान जिदी क्यों ना हो, वो रिमूव हो जाएगा जब आप डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करेंगे। ये भाई गर्मियों का सीजन चल रहा है ना, तो गर्मियों के सीजन में वैसे ही आपके चेहरे पर एक्नीज आना स्टार्ट हो जाते हैं। तो अगर आप भी डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का इस्तेमाल करते हो, यकीन जाने इतना शानदार ये ट्यूब है ना, पर्सनली मैं भी खुद भी लगा चुकी हूँ और मुझे जब भी एक्नी हो जाता है तो बस मैं डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब लगाती हूँ और वो ऐसे गायब हो जाता है, और एक्नी तो क्या, एक्नी का निशान भी गायब हो जाता है। तो यहाँ पर आप भी डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब का यूज कर सकते हैं, लगाने में इतना प्यारा है, इतना ठंडा ठंडा आपको महसूस होगा जब आप लगाते हैं तो ऐसा कूल कूल सा माहौल बन जाता है। और एक मजे की बात लगाएंगे किस तरह, तो आपको लगाने के तरीकेकार भी समझाती हूँ जरा। डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब को आप दो मरतबा इस्तेमाल करेंगे, सुबह को लगाएंगे और रात को लगाएंगे। लगाने से पहले अपना फेस वॉश अच्छे तरीके से करेंगे ताकि आपका चेहरा क्लीन होना चाहिए, आपके हाथ अच्छे से क्लीन होने चाहिए। उसके बाद जहां जहां पर एक्नी है, जहां जहां निशान है, जिस जिस चीज को आप रिमूव करना चाहते हैं वहां वहां पर आपने डॉट डॉट की सूरत में इस्तेमाल करना है, ठीक है, पूरे फेस पर नहीं लगाना, बस जहां जहां प्रॉब्लम है वहां वहां लगाना है। ओके हो गया। और डॉक्टर पिंपल एंटी एक्नी ट्यूब बहुत ही शानदार क्वालिटी का ये ट्यूब है, मेडिकेटेड फार्मूला है, तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं, कोई भी टेंशन की बात ही नहीं है। उसके अलावा यहाँ पर व्हाइटिश लवली क्रीम की जानब अगर हम आते हैं तो व्हाइटिश लवली क्रीम की बात मैं जरा आप लोगों को बताऊं तो व्हाइटिश लवली क्रीम एक फेयरनेस फार्मूला है, फेयरनेस क्रीम है, और इसे नॉर्मल फेयरनेस क्रीम की तरह बिल्कुल भी नहीं तैयार किया गया, क्योंकि इसके अंदर विटामिंस का भरपूर फायदा तो आपको मिल रहा है लेकिन साथ साथ आप लोगों को सनस्क्रीन का फायदा भी मिल रहा है, क्योंकि अलग से आप लोगों को सनस्क्रीन नहीं लेनी पड़ेगी, बस आप लोगों ने व्हाइटिश लवली क्रीम का इस्तेमाल कर देना है और आप चुटकियों में रेडी शेडी हो जाएंगे। अगर आप कोई काम करते हैं, कोई जॉब करते हैं, पढ़ते हैं, स्कूल जाते हैं, या फिर आपके घर में छोटे बच्चे हैं, आप उनके ऊपर फेस पर मेकअप नहीं लगा पाते, या फिर गर्मियों के सीजन में वैसे आप खुद भी मेकअप नहीं लगा पाते हैं, तो बस आपने व्हाइटिश लवली क्रीम का थोड़ा सा मिकदार अपने चेहरे पर अप्लाई कर देना है। जैसे ही आप अप्लाई करेंगे तो आपके चेहरे की स्किन जो है वो चमकना स्टार्ट हो जाएगी, आपको ग्लो मिल जाएगा और आपकी स्किन की प्रोटेक्शन

ही होती रहेगी। तो जल्दी जल्दी से कुछ ऐसे प्रोडक्ट का इंतखाब कर लीजिए जो कि आपको लगता है कि ये हमारी स्किन के मुताबिक तैयार किए गए हैं। लेकिन जब आप कोई भी व्हाइट एज के प्रोडक्ट को सिलेक्ट करें ना, तो व्हाइट एज लवली क्रीम को लाजमी सिलेक्ट कीजिएगा, क्योंकि ये आप सब लोगों की बेसिक नीड के मुताबिक है। क्योंकि अगर आपके पास कोई फेयरनेस क्रीम नहीं होती है ना, तो उसका होना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो व्हाइट एज लवली क्रीम आप लाजमी ट्राई करके देखिए, आपके पॉकेट के अंदर, आपके पर्स के अंदर व्हाइट एज लवली क्रीम होनी ही चाहिए। तो जरूर से इस्तेमाल कीजिए। लगाने के तरीकेकार बिल्कुल ये है कि आप अपना फेस वॉश करके इस्तेमाल करेंगे, थोड़ी सी क्रीम अपनी हथेली पर लगाकर उसे अपने चेहरे पर लगा लेंगे, तो आपके चेहरे पर जो है ना, आप देखेंगे कि भाई कितना जल्दी अच्छा वाला ग्लो आ चुका है। तो बिल्कुल ये तमाम प्रोडक्ट्स आपको इजीली कहीं से भी मिल जाएंगे, व्हाइट एज बस नाम लेकर तलब कीजिएगा। और इसके अलावा अपने करीबी जनरल स्टोर्स पर अवेलेबल कराते रहिए और डायल करते रहिए 0332738439। ये नंबर बंद मिले तो दूसरा नंबर है 0312502597। ये दोनों नंबर्स आप अपने पास सेव कर लें। आपको जो है ना, इन नंबर्स के ऊपर रابطہ करना होगा, कॉल या फिर मैसेज करेंगे, उन्हें बताएंगे कि भाईजान आप कहाँ पर मौजूद हैं और कहाँ कहाँ पर व्हाइट एज ब्यूटी प्रोडक्ट्स अवेलेबल नहीं हुए हैं। तो जल्दी से अवेलेबल कराइए, अपनी खूबसूरती का ख्याल रखिए। आप नहीं रखेंगे तो कौन रखेगा। और इसके अलावा यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद हैं, ज्वाइन करते जा रहे हैं, आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहते हैं। इसी के साथ साथ मैंने आज आप लोगों के लिए टॉपिक क्या रखा है जनाब, टॉपिक ये है कि आज आप लोगों के लिए समझ लेंगे एक छोटा सा चैलेंज है। चैलेंज यू है कि एक ऐसी बात आप बताएंगे, एक ऐसी बात आप शेयर करेंगे जो कि आपको लगता है कि ये बात सुनकर मुझे हंसी आएगी, क्योंकि आज हंसने का मेरा कोई भी मूड नहीं है। तो जरा कोशिश कीजिए। वैसे कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, सो लगे रहो बॉस।

मैसेजेस हैं आप लोगों के, और मैसेजेस में हमारे साथ हजार भाई कहते हैं कि मैं जिन बनकर आता हूँ, आपको हंसाता हूँ। फिर वैसे आप जिन से डरती हो या नहीं, मैंने कभी देखा नहीं है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि शायद नहीं डरूंगी। तो जिन बनकर आएंगी तो मैं हंसूंगी कैसे? मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगी कि ये रियल वाला जिन है या फिर हथ सा ठहल जिन आए। क्योंकि मैंने इतनी सारी हॉरर मूवीज देख रखी है ना, मुझे सारा पता है कि एक जिन को रेडी किया जाएगा तो कैसे रेडी किया जाएगा। अच्छा नसरुल्ला भाई कहते चैलेंज एक्सेप्टेड, अगर असां तक खिलायूं तो कोई असां के छा मिलंदो तवां के बुधाया छड़े बस समझी तो वो हूं। मुझे क्यों अपनी बात पर हंसी आ रही है, आप हंसाए ना मुझे। अच्छा दर्द दिल कहती है साफ साफ बोलने के चक्कर में मेरी जिंदगी से आधे लोग साफ हो गए हैं, यही थी दुआ बाबा। बिल्कुल सही था जो सनाला फुलपोटो हमारे साथ मौजूद है। वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ भाई जन, आप बताएं कैसे हैं? हैप्पी कहती है प्यारा शो, प्यारी आवाज और प्यारी मेरी आरजे सिद्रा मुस्कान, थैंक यू हैप्पी गर्ल। वास्तव भाई कहती है अदी सिडो असा भी तमाम वांग ड्यूटी जा पक्का आयो पहुंची वयासी। वाह वाह वाह वाह, उदास लड़की आ चुकी है उदासी के साथ साथ। और क्या कहती हैं, कहती हैं अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, बोले इस्लाम अदर, कैसी हो प्यारी आरजे एंड वेलकम मी, आपको वेलकम कहा जाता है स्वीटी। ओके जी, इरफान हुसैन मरी बलूच हमारे साथ है, कहते गुड शो थैंक यू। निदड़ी कहती है मैं ताने खाती नहीं, मारती हूँ लोगों को, बाकी मुझे सॉन्ग सुनाओ बिलाल सईद का न्यू दूरियां सॉन्ग। ओके आई ट्राई।

बात हो रही है। हाँ जी इश्टिंग कौन कौन पीता है? वैसे एक बात बताऊं, मेरा उस पर क्रश आ ही जाता, बस आने ही वाला था, लेकिन बात ये थी कि मैंने उसे इश्टिंग पीते हुए देख लिया। हाय सत्यानाश हो गया। बिल्कुल आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल कीजिए, और व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो बताइए आप कौन से प्रोडक्ट इस्तेमाल करें, व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम, व्हाइटिश लवली क्रीम, या फिर डॉक्टर पिंपल ट्यूब, सोप लगा रहे हैं या फिर फेस वॉश लगा रहे हैं, कौन सा प्रोडक्ट जल्दी बताइए। मोहम्मद जमान कहते हैं बुआ आज स्टिकर सैंड कर दिए, इतने सारे में ब्रश करती हूँ भाई, दांत क्या देखेंगे आप मेरे। एग्जैक्टली दम वाले पानी की बात हो रही थी। सॉरी सॉरी मैं भूल गई थी। बस वो क्या है ना कि समझने वाले समझ जाते हैं। सनोला फुलपोट्रो भाई कहते नसीब वालों को मिला करते हम सफर, इस दुनिया में बदनसीबों को अक्सर इश्क हो जाता है। अली जय पारी।

पोस्ट को लाइक और शेयर करते रहिए। मोहम्मद मीरन जखनानी भाई जी का बाबासी मर्सद माजूद खुश आमदी। ये हमारे साथ जी गुलाम फरीद बलोच, वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, खैरियत से। मैं ये अली भाई के लिए शायरी लिख रहा हूँ। वो दोस्त मेरा थोड़ा नाराज हो गया है। हम किसी से रिश्ता तोड़कर तमाशा नहीं बनाते, बस वहाँ खामोशी अख्तियार करते हैं जहाँ अगला अपनी औकात दिखा दे। गुलाम फरीद जागीरानी हमारे साथ है। आए हाय, अली भाई को ये राजी कर रहे थे या और ज्यादा नाराज कर रहे थे? क्या बात है। अच्छा, मोतिया से थानी भाई, वालेकुम अस्सलाम। मोहम्मद जमान भाई, मुझे मिस कॉल के ऊपर और ज्यादा गुस्सा आता है, तो ये आपकी ट्रिक जरा फेल हो गई।

व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आपके लिए अवेलेबल है जनाब। व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, व्हाइटिश ब्यूटी सोप लगाना चाहते हैं तो बिल्कुल लगाइए जनाब। रेगुलर आप कोई भी सोप लगाना चाहते हैं तो आपके लिए व्हाइटिश ब्यूटी सोप बहुत ही बेस्ट ऑप्शन साबित होने वाला है, क्योंकि व्हाइट एज का जो सोप है ना, ये बहुत ही कमाल का सोप है जिसके अंदर एवोकाडो मौजूद है, एलोवेरा मौजूद है, मिल्क मौजूद है। ये तमाम चीजें मिलकर तैयार हुआ है जनाब व्हाइटिश ब्यूटी सोप। अगर आप भी व्हाइटिश ब्यूटी सोप लगाना चाहते हैं तो आप सारे लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, बच्चे बूढ़े जवान हर कोई लगाएंगे जनाब। और उसके अलावा अगर आप साबुन नहीं लगाते हैं, फेस वॉश लगाते हैं, तो कोई बात नहीं जी, कोई बात नहीं, आपके लिए व्हाइटिश ब्यूटी फेस वॉश भी अवेलेबल है। व्हाइटिश का जो फेस वॉश है ना, ये विटामिन सी से तैयार किया गया है, इसके अंदर विटामिन सी भी है, थोड़ी थोड़ी विटामिन ई भी है, समझ रहे हैं। और ये इतना क्रीमी फेस वॉश है कि जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो आप कहेंगे आए हाय चस्सी करा दी, आज भी बिल्लो जिंदा है, बिल्लो ने कहां मरना है। और उसके अलावा व्हाइटिश फेस वॉश लगाती है बिल्लो, इसलिए बिल्लो आज भी जवान है। तो आप भी व्हाइटिश फेस वॉश यूज कीजिए, और व्हाइटिश फेस वॉश के साथ आपको मिल रही है व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो कि नाइट क्रीम है। नाइट क्रीम में लगाना पसंद करते हैं तो व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम का ट्राई जरूर करके देखिएगा। इसी के साथ साथ

आप बादल प्रोग्राम सुन रहे हैं वाई टिश इंडी स्किन ब्यूटी शो स्पॉन्सर्ड बाय वाई टिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंटी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कीजिए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए खूबसूरती का चस्का आपको भी लगेगा ना तब आप जानेंगे कि वाई टिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स वाकई कितने जबरदस्त क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है। वासा भाई कहते हैं आता भी वो आप खुद ही था और जाता भी वो खुद ही था मगर वासा एक बात अजीब थी उसमें नुकसान हुआ तो सारा हमारा हुआ अली दाढ़ू डोखते होगा समझा। और यहाँ पर किशोर भाई कहते हैं सलाम अदा स्मार्ट हाजिर माटा के चौथा भली करे आया और ऐसे कहते माशाल्लाह आज कराची जी हाँ भाई पावर आ पावर सुठी गाल है ना माशाल्लाह सदे जेको है ना शहर जो तवा समझू था। अच्छा किशोर भाई कहते अदा हाणे हाणे हाणे मो बुधो कसम बुधा न मु तो कदे एडो कोई एड ना ठायो और कहते टॉपिक जल्दी बुधा टॉपिक तमाम बुद्धि वरतो हूँ दो। मुश्ताक अहमद कुंभर कहते सिद्रा बहन अस्सलाम वालेकुम कैसी हैं आप आपका प्रोग्राम नाइस है मैं मुश्ताक अहमद कराची से आपको सुन रहा हूँ मुश्ताक भाई आपको वेलकम कहते। आदिल कहते कल मेरे दिल में अच्छा वो पता नहीं था ना दिल में बातें करते वो मैं कैसे सुनूंगी। आबिद ब्रोही भाई हमें सुन रहे हैं नौशरो फिरोज से हेलो। मुश्ताक अहमद कहते हैं क्या ये ट्यूब कराची में दस्तियाब है और कहाँ मिलता है कराची में आप जरा अपने करीबी जनरल स्टोर से मालूमात लीजिएगा आपको मिल जाएगा अगर नहीं मिलता तो जो नंबर आपको मैं प्रोग्राम के अंदर बता रही हूँ ना उन नंबर्स को आपने जरा नोट कर लेना है और नंबर्स आप अपने करीबी जनरल स्टोर पर डायल करके अवेलेबल करा सकते हैं। तो डॉक्टर पिम्पल एंटी एक्ने ट्यूब आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होगा आप ट्राई करके देख सकते हैं और हर स्किन के मुताबिक ही जनाब कोई टेंशन की बात ही नहीं। ओके जी मोहम्मद जमान की थी अस्सलाम वालेकुम। कहते हैं आरजी तुम्हें एक टैलेंट दिखाऊं बच्चों से चिप्स कैसे छीनकर खाई जाती हैं तुम भी खाओ फ्रेंड को भी खिलाओ मजे की जिंदगी जियो ये तो मैं बहुत पहले से कर रही आ रही हूँ तो ये टैलेंट मेरे अंडर कूट के भरा हुआ है आप कोई और बात बताए। नसुल्ला भाई कहते हैं हा साईं इहा जी स्किन ब्यूटी क्रीम मां मैं इस्तेमाल कई वडो असर आ मां एकड़ो चिकर गलती में वारन में लगाया और मुझे सजा वार अच्छा थी वया बिल्कुल भाई तांगे ख्याल करणो ने तांगे सिर्फ पाने फेस ते लगा लिया है दाढ़ी मुछन खां भी दूर रखो फेस से लगाने वाली चीज आई एक कंध ते भी थोड़ी लगा जो कंध भी तान जो थवाई ना तो मुंह जी टुकड़ी अच्छी हो जाए कंध वाली कार हो जाए ना क्यों बाबा।

वाई स्टेशन 30 इन ब्यूटी शो आप सुनेंगे पूरे पूरे 3 बजे तक। टाइम हो जाता है जरा न्यूज ब्रेक की जाने जाते हैं, उसके बाद शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वापसी जल्दी आप लोगों के पास आते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, यही मौजूद रहिएगा। मैं जरा यूं जाकर यूं वापस आती हूँ। सो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड एंड कीप लिसनिंग। वाई स्टेशन 30 इन ब्यूटी शो इज स्पॉन्सर्ड बाय वाई स्टेशन ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड 30 इन ब्यूटी प्रोडक्ट्स।

शहबाज शरीफ चयो त कश्मीरी नवाज लीग जे पॉलिसिन ते एतमाद कंदो आहे। अमेरिका ईरान विच में ॻाल्हियूं अॼु थींदियूं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प तस्दीक करे छॾी। डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान सां अॼु खां ॻाल्हियूं शुरू थी वेंदियूं। अबना हरमुज़ बाबति हिकु मुआहिदो मौजूद आहे। ईरान जे एटमी हथियारनि तां हथ खणण वारो मुआहिदो बि हासिल कयो वेंदो। माण्हू मारण नथो चाहियां, ख़बर हुई त हमले में केतिरो नुक़सान थींदो। अमेरिका सां हिन वक़्त का बि ॻाल्हि ॿोल न थी रही आहे। ओमान सां अबना हरमुज़ ते ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि। छिकताण में घटिताई लाइ नवां साल साम्हूं नाहिन आया। पाकिस्तान साफ़ तौर किरदार अदा करे रहियो आहे। कतर बि ज़रूरत पवण ते मदद फराहम कंदो आहे। चीन छिकताण घटाइण लाइ मदद फराहम करण जी कोशिश करे रहियो आहे। ईरानी परडे॒ही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान जूं ॻाल्हियूं कंदड़ वक़्त जा सभु मेंबर ईरान में ई मौजूद आहिनि। फ़िलहाल कंहिं बि वक़्त जी मेज़बानी करण या कंहिं जो महिमान थियण जो इरादो नाहे। ओमान सां अबना हरमुज़ में महफ़ूज़ रस्ते ते ॻाल्हियूं जारी आहिनि।

अमेरिका ईरान जे ॻाल्हियुनि खां पहिरें पाकिस्तान ऐं सऊदी अरब जो मुतहरिक। सऊदी अरब जे परडे॒ही वज़ीर जो ईरानी हमनसिब अब्बासी रक़्ची सां फोन ते राब्तो। खिते में जारी छिकताण जे ख़ात्मे लाइ सिफारती कोशिशनि ते ज़ोर भरियो। ज़रियनि मूजिबि ईरानी परडे॒ही वज़ीर अब्बास रक़्ची फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर सां बि ॻाल्हि ॿोल कई आहे। वॾे वज़ीर सैयद मुराद अली शाह सां वर्ल्ड बैंक जे कंट्री डायरेक्टर बुलोरमा उमगा बाज़ार जे मुलाक़ात। ॿारनि जी वाद वेज में रुकावट जे ख़ात्मे लाइ सिंध हुकूमत ऐं वर्ल्ड बैंक जो गॾियल हिकमत अमलीअ ते इतफ़ाक़। गिज़ायत साफ़ पाणी समाजी तहफ़ुज़ ऐं ज़राइत खे गॾियल फ्रेमवर्क हेठि आणण जो फ़ैसिलो। वॾे वज़ीर चयो त ॿारनि में गिज़ाई खोट इंसानी तरक़ी ॾाढो वॾो चैलेंजनि मां हिकु आहे। ॿारनि जी गिज़ायत बहितर बणाइण लाइ गॾियल हदफ़ ऐं मज़बूत मॉनिटरिंग सिस्टम कायम कयो वेंदो। वफ़ाक़ी घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी जी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां लाहौर में मुलाक़ात। मुल्की सियासी ऐं सिक्योरिटी सूरतहाल ते ॻाल्हि ॿोल। ज़रियनि मूजिबि घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सां मॉडल टाउन में गुज़िरियल ॾींहुं मुलाक़ात कई हुई। मुलाक़ात दौरान मुल्की सियासी ऐं सिक्योरिटी सूरतहाल ते ॻाल्हियूं कयूं वयूं।

0: पंजाब के शहर रावलपिंडी में बरसात तबाही मचाए छी। पानी घर में दाखिल रोड्स से भी टिन का चैन फोटन ताई फुटन ताई पानी बीठल शहरी सख्त परेशान।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क। GAFM 88 नेटवर्क। सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क। GAFM 88 नेटवर्क। सिंध की आवाज।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन ए बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-230।
5: कैश ए किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जो पक्यू छिटू लगरा लाए खुश खबरी। छा चाहो था अवां जे घरन जो छिटू पक्यू हुजन त कैश ए किस्तन ते 50 साल गारंटी सा छिटू लगरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ए सस्ते में सस्ती छित लगरा लाए राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निजामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरियाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरियाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निजामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाए 24 कलाक खुलियल रहंदो। निजामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलत मौजूद आहे। निजामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाए एडमिन नाना सोलंगी। मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
7: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
3: छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GFA मातली बदीन।
9: बस पो हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
9: 0331252576।
5: जी हा, 2315525786।
9: GFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।
10: ओ अज जल्द मु

सो वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM88 नेटवर्क. हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है जनाब सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और जनाब लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आप सुन रहे हैं व्हाइट एश एंडी स्किन ब्यूटी शो. बिल्कुल जी, स्पॉन्सर्ड किया जा रहा है व्हाइट एश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के तावन से. आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है, मेरे साथ कौन है मुझे बताएं, ये जनाब अपने होने का एहसास दिलाएंगे और हम आ चुके हैं प्रोग्राम के दूसरे घंटे में. तो आप लोगों को वेलकम एंड खुशामदीद. आपकी मोहब्बत और समातों और चाहतों का बेहद वाला शुक्रिया. बिल्कुल जनाब, सो अभी आप लोगों को बताने की बारी आ चुकी है डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में. तो डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स के बारे में जाना आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी बन चुका है, क्योंकि जब आप मार्केट जाते हैं और बहुत सारे प्रोडक्ट्स आप देखते हैं तो आप ये सोचते हैं कि भाई इनमें से कौन सा प्रोडक्ट लिया जाए, कौन सा प्रोडक्ट यूज किया जाए, और उस कन्फ्यूजन के अंदर रहते हुए आप लोग ये सिलेक्ट ही नहीं कर पाते कि भाई अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, ऑयली हो, ड्राई हो, नॉर्मल हो, तो इन तमाम चीजों को कैसे फेस किया जाए, किस तरह के प्रोडक्ट इस्तेमाल किए जाए. आप कोई भी प्रोडक्ट उठाकर अपने चेहरे पर लगा लेते हैं तो उससे ये होता है कि आपकी जो स्किन है वो खराब होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, आपके चेहरे पर बहुत ज्यादा एक्नी प्रॉब्लम बढ़ जाता है, निशानात आपके चेहरे पर आ जाते हैं और आप अपनी उम्र से बहुत बड़े लगना स्टार्ट हो जाते हैं. अगर ऐसा वाला सीन आपके साथ हो चुका है या फिर आप चाहते हैं कि ऐसा वाला सीन हमारे साथ ना हो भाई, तो आपने डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इंतखाब कर लेना है, क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम के बारे में आप लोगों को जो जो बातें मैं बताऊंगी ना वो इतनी जबरदस्त होने वाली है कि आप ये सोचेंगे कि भाई ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में अवेलेबल है तो आप भागते हुए जाइए और परचेज करके आइए. क्योंकि डी स्किन ब्यूटी क्रीम एक ऐसी क्रीम, इसे ऐसे तरीके से तैयार किया गया है कि ये मेडिकेटेड फार्मूला है और जनाब मेडिकेटेड फार्मूला होने के साथ साथ इसे डॉक्टर्स की फुल निगरानी के अंदर तैयार किया गया है, जिसके अंदर आपको विटामिन ई बीड्स मिलेंगे, माइक्रो बीड्स फॉर्मुलेशन, अल्फाबुटीन, कॉजिक एसिड, ग्लूटाथायोन, ये तमाम चीजें डी स्किन ब्यूटी क्रीम के अंदर ऐड की गई है. और ऐड करने का फायदा जो आपको मिलेगा वो ये कि आपकी जो स्किन है ना वो इतनी ज्यादा जबरदस्त हो जाएगी, आपके चेहरे पर जो रिजल्ट आएगा वो सिर्फ 2 रातों के इस्तेमाल से ही आपको मिल जाएगा. तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आप कितना अच्छा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं. और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ साथ आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि डी स्किन फेस वॉश भी आपको मिल रहा है. बिल्कुल जनाब, दोनों चीजें साथ में इस्तेमाल करेंगे और डी स्किन ब्यूटी क्रीम जब आप इस्तेमाल करना स्टार्ट करेंगे तो आप लोगों को पता होना चाहिए तो डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो है आपकी जिल्द की खूबसूरती और हिफाजत के लिए तैयार की गई एक मयारी ब्यूटी क्रीम है, जो जिल्द की जिल्द को ना नमी फराम करती है और चेहरे को नरम, मुलायम और तरोताजा बनाती है. और उसके अलावा अगर आप बाकायदा इस्तेमाल करते हैं डी स्किन ब्यूटी क्रीम का तो आपकी जिल्द की जो बेरोनगी है वो भी कम हो जाती है और चेहरा ज्यादा साफ, रोशन और दिलकश दिखाई देता है. डी स्किन ब्यूटी क्रीम में शामिल जनाब खसूसी अज़ा जो आपकी जिल्द को फ्रेश एहसास देते हैं, खूबसूरती में इजाफा करते रोजाना इस्तेमाल से आपकी जल्द जो है वो कुदरती निखार आना स्टार्ट हो जाएगा और आपकी खूबसूरती में इजाफा आना स्टार्ट हो जाएगा. तो चाहे मर्द हजरात हैं, चाहे आप खवातीन हैं, हर कोई चाहिए आप लोगों को कि आप डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करें. बिल्कुल जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करते रहिए और साथ में आपको डी स्किन फेस वॉश मिल रहा है, तो ये भी चीज जरा याद रखिए. और डी स्किन फेस वॉश की जाने पाते हैं तो डी स्किन फेस वॉश भी भाई कमाल का प्रोडक्ट है, ये भी किसी से कम नहीं है. और डी स्किन फेस वॉश जो है ना इसे तैयार किया गया है, इसके अंदर एड है जनाब हाइलोरोनिक एसिड सीरम. और हाइलोरोनिक एसिड सीरम की अगर बात की जाए यहाँ पर तो इसका इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए इस तरह जरूरी होता है कि जब आप डी स्किन फेस वॉश का यूज करेंगे जिसके अंदर हाइलोरोनिक एसिड सीरम एड किया गया है, तो ये सीरम आपकी स्किन को हाइड्रेट रखता है, आपकी स्किन को क्लीन बनाता है और आपकी स्किन को मॉइस्चराइज भी रखता है. तो ऐसा होता है ना कि अगर आप कोई भी साबुन लगाते हैं, कोई फेस वॉश लगाते हैं जो आपकी स्किन को जरा जो है ना वो ऐसा रूखा सूखा बना देता है, बहुत सारी खुश्की आपके चेहरे पर आ जाती है, तो जब आप डी स्किन फेस वॉश का इस्तेमाल करेंगे ना तो आपकी स्किन जो है वो इस्तेमाल करने के बाद फौरन बाद ही मॉइस्चराइजिंग का आपको एहसास होना स्टार्ट हो जाएगा. तो डी स्किन फेस वॉश आप जरूर ट्राई करके देखिएगा, जैसे भी कोई फेस वॉश यूज करते हैं वैसे ही करेंगे, दिन में 2-3 मरतबा लगा लीजिएगा. रात को फेस वॉश बहुत ज्यादा जरूरी होता है तो वो इसके बिल्कुल मत किया करें. रात को फेस वॉश करके अच्छे से उसके बाद डी स्किन ब्यूटी क्रीम अपने चेहरे पर अप्लाई कर लीजिए. बहुत ही शानदार क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स हैं. आप ट्राई करके देखिए, आपकी खूबसूरती आपको मिल जाएगी और आप ना सिर्फ खूबसूरत हो जाएंगे बल्कि आपको ये एहसास भी होगा कि भाई वाकई आपके पास अब अच्छे प्रोडक्ट्स भी मौजूद हैं. तो मार्केट जाइए तो अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स परचेज कीजिए जिसमें आप लोगों के लिए डी स्किन ब्यूटी क्रीम एंड डी स्किन फेस वॉश भी शामिल हो जाता है. और नाम लेने की सूरत में आप अपने करीबी जर्नलिस्ट
स्टोर्स पर अवेलेबल कराना चाहते हैं तो आपने डायल करना है 0332738403 09 और दूसरा नंबर है 0312502597 0312502597

तो आज के प्रोग्राम में मैंने टॉपिक आप लोगों को ऐसा समझ लें कि एक चैलेंज दिया है कि आपने कोई ऐसी मुझे बात बतानी है जो बात सुनकर मुझे हंसी आ जाए। आज मेरा जरा हंसने वाला मूड नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ कि आप कोई ऐसी बात करें जैसे सुनकर और देखकर मुझे हंसी आ जाए। समझ रहे हैं?

बहुत ही ब्यूटीफुल सा गाना हमने लिस्ट में लगा लिया है जो कि अली सफर की आवाज में है. अली सफर ही है ना. हाँ जी. ओके जी, एहसन अली बुक्टी भाई हमारे साथ हैं. आपको भी खुश आमदीद कहते हैं और निदली कहते हैं टॉपिक तो देखो तुम ही और हंसाओ. जरा सी बात पर हंसती हो तुम. रुको बताती हूँ, मैं आज फुल कंट्रोल करने वाले मूड में हूँ. अरे किशोर भाई कहते असांजी हाजरी तुम्हारे चेहरे ते स्माइल वठी ही दिया है. जाई बुदा अच्छा छा था चो बुद्धता यो मुखे हजार त खुलियो करे रे. हजार खुलो न थी तो बाबा खुलो थी तो मिंट खत्म थी वेंदो. इन लाइ असां खुलो न कराईंदासीं.

कहते हैं आज आपको हंसाना इतना मुश्किल हो गया है जितना गूंगे को शादी के लिए हाँ बुलवाना है। इतना भी मुश्किल नहीं है। अली मुर्तजा कहते हैं दुनिया का सबसे मुश्किल काम है किसी को हंसाना और ऊपर से सड़ियल को तो बड़ा ही मुश्किल। माँ सड़ियल आया माँ तो स्वीट आया वो अलग बात है आप हंसा नहीं पा रहे। अच्छा लुबी हमारे साथ ही वालेकुम अस्सलाम सिडो जानी में भी आ गई तमांजे शो में खुश आयो नी सिडो माँ भी खुश आया वाह वाह वाह वाह माशाल्लाह हमेशा खुश रहो। कहती मिस यू सिडो जानी निधि एंड जिया को भी मिस यू। चले दोनों को मिस यू हो गया बिल्कुल जी खबी है तुम्हारो सही समझो सुमरो बा क्या। अच्छा मूसा कोरी भाई हमें सुन रहे हैं वालेकुम अस्सलाम वासा भाई कहते माना इहा गाला अदि सिदरा की खिलाणो आ होशियार थी अदि माँ होशियारी आया तां पांजी कयो।

ना बाबा ना बाबा एक्टिंग ऐसा कौन पहना है। अखलाक भाई कहते ये सब क्या देखना पड़ रहा है, अच्छा है मैं अंधा हूँ। होश हो ना खबर हो, अच्छी बात है, ऐसी चीजें नहीं देखनी चाहिए, सुननी भी नहीं चाहिए। मोहम्मद जुमान बहुत शुक्रिया जी। दरगे दिल कहती हैं गली गली में पंखे हो, हर शहर में रात जुगनू सितारे, रंग खुशबू नजारे। नहीं ऐसा मैं नहीं बोल सकती, सॉरी माजरत। हाँ असा वा थी वह असा हाँ खिचको न कहसी।

0: रमजान भाई हमारे साथ मौजूद है। रमजान भाई वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक ठाक, मजे में।
1: रंग खुशबू नजारे, प्यार के हो इशारे और तुम साथ।
0: निदड़ी कहती है कि टॉपिक कोकिला ने बोला राशि को,
1: सुना सुना
0: गोपी कहाँ है? राशि ने बोला गोपी अपने रूम में होगी। कोकिला ने आवाज दी गोपी को और गोपी बहू आ रही थी, साथ में ये सॉन्ग भी प्ले हो गया। ले में सैया आ गई सारी दुनिया छोड़। ये आप हंसाने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन आप जरा फेल हो चुकी हैं, तो और ट्राई करें।
1: और तुम साथ हो।
0: वैसे ये गोपी वाला जो है ना, वो ड्रामा 2 भी आ गया है, उसमें गोपी का नाम है इसका। ये वो वाली चस नहीं दे रहा जो पहले वाले की।

0: लोकी। डरते तो लगती है कि आठ से आप लोग ये बात समझ नहीं आई क्या, जरा गहरी बातें करने वाला जो कमेंट है ना, ये समझ नहीं आया। और कहती है कि जरा सोच रही हूँ, वजन थोड़ा बढ़ा लो, आजकल लोग मुझे हल्के में ले रहे हैं। हाँ जी, बढ़ाइए बढ़ाइए वजन, फिर कम करना बहुत मुश्किल लगेगा। अच्छा हाँ, ये मैं खुद ही सोच रही थी कि 5 बजे वाला मेरा जो शो है ना, वो जब बीच में पोस्ट बंद हो जाती तो मुझे ये लगता था कि वो प्रोग्राम ही बीच में कट हो जाता है, यानी कि पूरा नहीं प्रोग्राम चल पाता होगा। लेकिन वो मैंने कल फिर सुना था तो मुझे लगा था भाई प्रोग्राम जो है ना वो पूरा ही चल रहा है, बस आप लोगों के कॉमेंट्स ना बंद हो जाते हैं, ये पता नहीं क्या मसला है। और मैंने ये थोड़ा डिस्कस किया तो मुझे पता चला कि ये पहले भी थोड़ा मसला हुआ था, इस टाइम के साथ थोड़ा सा इश्यू है, तो ये खुद ही मसला जो है ना वो ठीक हो जाएगा। पता नहीं कि इसके साथ क्या करना पड़ेगा मुझे, बस सब्र ही कर सकते। वैसे मैं सोच रही थी एक और बात वो बताऊंगी, जरा रुको सब्र करो, अभी टाइम आ चुका है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का, तो हम जरा शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की जानब जाते हैं, उसके बाद जल्दी से वापसी आप लोगों के पास आते हैं। तो सुनते रहिए और हमारे साथ ही रहिए पूरी पूरी 3 बजे तक। आप सुन रहे हैं व्हाइटिश एंड डी स्किन ब्यूटी शो, स्पॉन्सर्ड बाय व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स। लगाइए ताकि आप ही खूबसूरत हो जाए।
1: मेहरान की सकाफत से गुंदा हुआ आवाज की डोर से बंधा हुआ
2: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: हम सिंध में रहने वाले, सिंधी मेहमान नवाज हैं सारे।
4: खूबसूरती है जो असल राज, सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी और चमकदार, सिर्फ बिंदीहन में। डार्क स्पॉट्स के करे खत्म और दिए कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर डी जोशो। अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
5: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
6: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
5: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद,
6: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
5: औलाद जो न थियण और तुंजे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन आई बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
6: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली, वधिक मालूमात लाय 2347-3141-230।
7: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
8: खुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
5: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रखंदा ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮਾਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਆਵਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਲਈ 24 ਕਲਾਕ ਖੁੱਲ੍ਹਲ ਰਹਿੰਦੋ। ਨਿਜ਼ਾਮਾਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਓਟੀ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਐਂ ਫਾਰਮੇਸੀ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮੌਜੂਦ ਆਹੇ। ਨਿਜ਼ਾਮਾਣੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਾਰਮਲ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਸਤੇ ਅੱਗ ਤੇ ਕਈ ਵਜੇ ਥੀ। ਵਧੀਕ ਮਾਲੂਮਾਤ ਲਈ ਐਡਮਿਨ ਨਾਨਾ ਸੋਲੰਗੀ, ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ 210-31-43-842।
9: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
10: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
9: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
10: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
9: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
10: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
9: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03713800392।
10: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
5: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
7: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
5: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
7: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
5: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
7: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
5: 03132525786।
7: जी हा, 231-25-25-786।
5: GAFM रेडियो नेटवर्क,
7: सिंध जो आवाज़।

ओके जी, वापस आ चुके हैं दोबारा से आप लोगों के पास और आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क। हमारे साथ मौजूद है जनाब यहाँ पर सखर मोरो मीरपुर खास मटियारी सकरन मेहरापुर मातली और लाड़काना के लाइव स्टूडियो से आपके सिद्धराव के साथ मौजूद है। मेरे साथ कौन है मुझे बताते जा रहे हैं, अपने होने का एहसास दिलाते जा रहे हैं और जनाब जी कौन सा प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी बताते जा रहे हैं। तो चाहे आप व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाएं या फिर डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स लगाएं, हर तरह से आपकी खूबसूरती की हिफाजत ही हिफाजत है जनाब। खूबसूरत बनना और खूबसूरती की हिफाजत का या दोनों चीजों में बहुत ज्यादा फर्क होता है। खूबसूरत तो आपको कोई भी प्रोडक्ट बना देगा लेकिन आपकी खूबसूरती की हिफाजत करना ये थोड़ा सा डिफिकल्ट काम बन जाता है। तो अगर आप भी ये सोच रहे हैं कि भाई आपकी खूबसूरती की हिफाजत होनी चाहिए, आपको खूबसूरती मिले और उसके साथ साथ आपकी खूबसूरती की हिफाजत भी होती रहे, तो आपके लिए व्हाइटिश ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड डी स्किन ब्यूटी प्रोडक्ट्स मौजूद है। ओके जी, सो डी स्किन ब्यूटी क्रीम आप अच्छे से जानते हैं कि ये एक मेडिकेटेड फार्मूला है जो कि डॉक्टर्स की निगरानी के अंदर तैयार किया गया है। अगर आप भी डी स्किन ब्यूटी क्रीम का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो बिल्कुल इस्तेमाल कीजिए, बहुत ही मुनासिब से पैसों में आपको मिल रहा है ये प्रोडक्ट। और डी स्किन ब्यूटी क्रीम के साथ आपको डी स्किन फेस वॉश भी मिल रहा है, ये भी कमाल का प्रोडक्ट है। तो बहुत ही ज्यादा प्रीमियम क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, जब आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको पता चल जाएंगे कि भाई वाकई ये प्रोडक्ट्स कितने कमाल के हैं। और उसके अलावा मर्द हजरात खवातीन हर कोई इस्तेमाल कर सकता है।

हाओ हाओ सा नवनी वाला खिलां दी खिलां बस दिसो त मुझे खिलण जी केडी ता की परवाह माशाल्लाह माशाल्लाह सदको वन्या अल्लाह से खुश रखे व ओ हेडो सारो खुश रखे व अच्छा उन का अलावा हे तवां जा पैनल ते मैसेज आए त पैनल दी तरफ अचू सा हैप्पी गर्ल हमारे साथ के दी अस्सलाम वालेकुम आरजे सडो जानी आज मां भी अच्छी वयम बहुत दिनों के बाद चली जी आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है हैप्पी गर्ल अंबर हमारे साथ फ्रॉम लाड़कना कहती अदी सडो मुझे याद करती है या नहीं भुला दिया होगा ना 3-5 साल के बाद शामिल हुई हूँ शो में अदी आप हंसती हैं तो मुझे आप बहुत पसंद आती हैं हंसा करें जी जी मैं बहुत हंसूंगी ठीक है अच्छा अंबर बिल्कुल आप हमें याद है इतना टाइम आप कहाँ गुम हो गई थी बताएं तो जरा और ये हमारे साथ है हैप्पी गर्ल ओके जी आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है प्रिंस अहमद अली रिंद हमारे साथ फ्रॉम सरदार अली असगर रिंद कहते हैं सलाम पाकिस्तान पाक आर्मी प्लीज आज अली जफर का कोई भी खूबसूरत सा गाना लगाएगा बिल्कुल जी अली जफर का गाना आपको सुना लिया आपने एंजॉय करा होगा मीरपुर खास से अब्दुल्ला महर कहती है सलाम अलैकुम बाजी व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जबरदस्त है वाह साई वाह ये तब वही मानू जगह व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल कर पाया सो तमाम भी व्हाइटिश ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो या डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल करो जो मुनासिब लगे जो सूट करे तो वो तमाम लगायो बाबा ये तमाम भी खूबसूरत है अच्छा अंबर फ्रॉम लाड़काना कहती है कि अदी सिडो में 3 साल के बाद शामिल हुई हो और आप मुझे भूल तो नहीं गई है ना मेरी शादी हो गई है ओके माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह खुश

और रतो देरों से रेहान खान हमारे साथ। फयाज उर्स अहमद कहते हैं, बाजी क्या हाल है आपके, खुश हैं? कोई भी मजाया सॉन्ग सुनाइएगा, जैसे बताइएगा। उनका अलावा हैप्पी गर्ल कहते सिडू जानी ठीक है आप, शो हमेशा की तरह आपका बेस्ट जा रहा है, थैंक यू। ये हमारे साथ ही अस्सलाम वालेकुम मैडम साहिबा, केड़ा हाल है तमाजा? फौजी पठान खान खोसो हमारे साथ है। मैडम असां के कोई भी गानो बुधराए जो, शाहबान अली खोसो भी तमासा गड मौजूद आहे, सो थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू। फौजी स्टेशन का फौजी पठान खान खोसो, वडेरी सिदरा मुस्कान असां के फौजिया सुमरो बुधराए जो, हाजिर प्यारा भा तमाजी फरमाइश हलाण जी कोशिश कयूं था। और हमारे साथ ही मकसूद मल्हा कहते मेहरापुर से, आदाब सिदरा जवाब है, असां जो पांजो अज मूड खराब आ, असां के तखिला पेरिया, मां जिंदगी में पेरों दफो ता के चवा ता मुखे खिलायो दिसो, कर दी ना छोटी बात, चलो कोई बात नहीं ता के खिलाईंदासी बाबा। मुजो मूड केड़ो बे होंदो आ ना, मां फील ही ना कराण दी ता के ता मुजो मूड सही आया खराब आ। उनका अलावा जेको आ साजिद अली जमाली है नवाब शाह से कहते सॉन्ग प्ले करे मुमताज मलाई, हाजिर हले तो मुमताज मलाई, थोड़ो बस सबर कजो। चाचा खालिद हमारे साथ कहते एक तकलीफ सॉन्ग की है जी, बिल्कुल चाचा तवा जो गानो हलायो था, थैंक यू सो मच तवा से गड आयो। मुमताज मलाई तो इंदो पर मुंह समझो पेरा नगत नाज के अचन घुर्जे सैया।

सही बात, बिल्कुल सही। आप इस्तेमाल करेंगे जी स्किन ब्यूटी क्रीम और जी स्किन फेस वॉश, लगाइए ताकि आप भी खूबसूरत हो जाए। अच्छा अदा अच्छा था चो अदा चे तो अदा मुख्य तुझी खिले छो वणंदी आ खबर आ न बुधाए जो ता सही छो वणंदी आ है यो इन जे पोया केड़ो रीजन आ है अच्छा मोहसिन अली हमें सुन रही है लाड़काना से, मोहसिन अली बिरोही मीरो खान चौक लाड़काना से आपको वेलकम एंड खुशामदीद कहा जाता है। अली मुर्तजा कहते हैं अनमेच्योर लोगों को हंसाना इजी है, मेच्योर और प्रैक्टिकल लोगों को ऐसी बातें करके खुद हंसी का सही बात है वैसे। अच्छा मोहम्मद जमान कहते हैं तू नहीं खेले तो चलो ठीक है आसान खेलो बिल्कुल तहा खेलो तहा खेलो। आदिल कहते हैं कि जो गुम हुए वो जमाने तलाश करता हूँ, मैं वापसी के बहाने तलाश करता हूँ। अच्छा चाचा खालिद आ चुके हैं, गुड आफ्टरनून बेटा सिडोर, आई एम हेयर। आपने पूछा कि कोई ऐसी बात जिस पर आपको हंसी आए तो वो आप आरजे हैं, आप हंस के दिखाए ना हम दुखी लोगों के लबों पर हंसी आई हुई टॉपिक आंसर। बिल्कुल बिल्कुल चाचा तमाम जड़न मानुन चलाए था हमेशा मां खिलन दिया है जी तमाम के एहसास न थे तो बाबा दुनिया में केड़ा गम आने खैर दुख सुख हर कें जिंदगी में होता है, दुख सुख यानी कि बई चीजों जेके तवाजी जिंदगी में लाजमी होंदियो। ये भी ना तो जिंदगी में या दुनिया सरी में को एड़ो मानु हो जेको सिर्फ हैप्पी होंदो या को एड़ो मानु हो जेको सिर्फ जेंज लाइफ में दुख होंदा, दुख सुख बिनी बई जेके होंदा ना तवाजी जिंदगी में मौजूद होंदा है। पर इया गाल होंदी तो तवा वधिक तरजीह केंखे दियो था, ता दुखन के तरजीह दियो था या ता सुखन के, छो तो जेके मानु दुखन के वधिक वैल्यू दींदा तो हु हमेशा सैड ही रहंदा, बाकी जेके खिलण वारा मानु हुंदा जेके चवंदा बाबा छा है जिंदगी तो पई हलंदी, पर अचो तो जिंदगी के एंजॉय कयो, असा जेड़ा मानु उहे पया खिलंदा रहंदा है, सो खिलंदा कयो बाबा, अई खिलंदा जेके मानु उहे त डाढा सोणा हुंदा है। सो तवा भी अगर सोणा थियण चाहियो था खिलण सा गडो गड तवा के डी स्किन ब्यूटी क्रीम जो इस्तेमाल भी करणो पवंदो, अई डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगर तवा नथा इस्तेमाल करे सको तो तवा वटि डी स्किन जो फेस वॉश मौजूद आहे, अई डी स्किन फेस वॉश लगाइण खां फौरन बाद तवा के एहसास थींदो त बाबा डी स्किन जो फेस वॉश एॾो सोणो आहे, एॾो भलो आहे, एॾो ज़बरदस्त आहे, हाणे असांखे डी स्किन ब्यूटी क्रीम भी लॻाइण घुर्जे। सो तव्हां डी स्किन ब्यूटी क्रीम बि लॻायो, डी स्किन ब्यूटी क्रीम अगरि नाइट क्रीम आहे हुनखे तव्हां राति टाइम लॻाए सघो था, बाक़ी डी स्किन जो फेस वॉश उहो त बाबा तव्हांजी जंहिं महिल दिलि चवे तव्हां तंहिं महिल लॻायो, तव्हांजी शइ आहे।

ओके, बहुत खूबसूरत गाना हमने सुना। एक और गाना हमारी लिस्ट में है जो कि मुमताज मलाई की आवाज में होने वाला है। मुमताज मलाई के गाने की आप बहुत से लोग फरमाइश कर रहे थे, तो हमने फाइनली ये वाला गाना लगा लिया है जो कि हम इंजॉय करेंगे। अदा टेम आया था टेम।

ओके जी, पोस्ट के लाइक शेयर करना हलो ठीक है, तवां जे तरफ का मोहब्बत हुंदी आहे। अखलाक भाई कहते खिलंगा त कुतर कुतर कंदा मां असा वडा खूनी मानू आयो अली एडी वडी धमकी दे छडी हाने तो मके जोरी भी खिलणो पंदो। थैंक यू सो मच, थैंक यू चाचा कहते हजार खुल्यो। हाँ हाँ हजार भाई के चौथा असा के हजार खुलो करे दीनो। और उनका अलावा अली मुर्तजा के ते मानो स्पॉन्सर्ड करे करे अमीर थी वया ये न माने थोड़ो थोड़ो साल थे वतो न अल्लाह जो शुक्र आ बाबा। निदड़ी कहती है कि ऐसी बात है तो सुनो अली एडो वडो कमेंट। कहती है कि मेरी माँ साथ जहरा मेरी भाभी को बोलना चाह रही थी तुम्हारी मोबाइल मुझे पसंद नहीं, बट उसने भाभी को बोला कि मुझे तुम्हारी ओ तेरी ये तो भाई साहब कुछ ज्यादा हो गया। अच्छा अली अकबर भाई आप ममताज मलाइका का गाना सुनना चाहते थे तो ये ममताज मलाइका का गाना चल रहा है।

मतलब ये गाना मैं सुन तो रही हूँ लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि हे तीर जेको आ सोयो इन्हें जो मुंह केडा है।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-32-41-200।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छिटियूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छिटियूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छिटियूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
6: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
2: 03125252786।
4: जी हा 231-25-25-786
2: GAFM रेडियो नेटवर्क
4: सिंध जो आवाज़।

0: 3:15 PM.
1: This time check is brought to you by White-ish Beauty Cream, Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan. सिंध का हर चप्पा हर गोशा
2: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
1: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
2: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अब आपकी खूबसूरती का फैन, White Age Beauty Cream।

0: तू तो मेरा फैन।
1: White H Beauty Cream 5-day beauty plan के साथ एलोवेरा विटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेटा निखरा निखरा चेहरा। वाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। वाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन, हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे, आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी, आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
4: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशखबरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। याद रख, निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
6: खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: उन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
2: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
4: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: ऐं हा, ॻोठनि, शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
2: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
4: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
2: 03125252786।
4: जी हा, 2315525786।
2: GAFM रेडियो नेटवर्क,
4: सिंध जो आवाज़।

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: सिंध के हो तो आवाज भी सिंध की है। GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रो बीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ 2 दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें फेड और दे कुदरती असली ग्लो। डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
2: अमड़ सिंध के सींध में एक चमकंदड़ सितारो
3: दुखोयल इंसानियत की खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकानी चौक मातली ते औरतन के बीमारियों की माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानू सुबह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-32-41-230।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शि ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
5: खुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
6: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
7: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
2: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
4: त पोइ GFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
2: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
4: گوٹھن شہرن پرے پرے تائیں بدھو ویندڑ ریڈیو جی ایف اے ماتلی بدین
8: بس پو ہانے کھنو فون پینجے اشتہار لائن لائے
4: اساں جے اسٹیشن مینیجر یونس بکاری ساں ہن نمبر تے رابطو کندا
8: 0331252578 6
4: جی ہاں 2131525786
8: جی ایف ایم ریڈیو نیٹ ورک
4: سندھ جو آواز

0: दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं
1: GAFM
0: 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
2: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: एक्शन कमेटी के साथ मिलकर मैं ये कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूं, और हम इसको जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास भी जा रहे हैं, हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे, और अगर ये साबित हो तो फिर शहर में जो है वो हम रीपोल की जो है वो दरखास्त करेंगे। इन्होंने एक्शन कमेटी के साथ मिलकर वहां पे एक चौक में जो है वो हंगामा करवाया, टायरों को आग लगवाई, और जब पुलिस वहां पे पहुंची तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करवाई। पीपल्स पार्टी के वो लोग जो है वो हमारे पास उनके नाम मौजूद हैं जिन्होंने ये हरकत की है, और उस क्रॉस फायरिंग में जब एक आदमी जो है वो हलाक हो गया तो उसके बाद जो है वो पूरे शहर में खौफ खराज करी।
2: नवाज लीग जी आजाद कश्मीर में सादी अक्सरियत हासिल करने की दावा, पीपल्स पार्टी पाबंदी मड़ियल तंजीम से गड हंगामा करने जो इल्जाम। वफाकी वजीर अमीर मुकाम से गड प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे राणा सनाउला चयो आजाद कश्मीर में चूंडू शफाफ माहौल में थियो आहिन। आजाद कश्मीर के 45 सीटन मां 23 ते नवाज लीग कामयाबी मानी है। गुजरियल डी थियल चूंडन में भी 14 सीटू नवाज लीग खटियो आहिन। महाजरन के 12 सीटन मां भी 10 सीटू नवाज लीग खटियो, बिन सीटन ते पीपल्स पार्टी कामयाब थी है। दांदली जो पिटको कंदड़ 7 सीटन मां रुगो 3 सीटू खटे सघिया आहिन। मुजफ्फराबाद में पीपल्स पार्टी के मानन पाबंदी मड़ियल एक्शन कमेटी से गड़ी हंगामो फायरिंग कई। चौधरी लतीफ के तक के भी डिस्टर्ब करण लाय पूरो जोर लगायो। हमले की दावा कंदड़न मेडिकल भी न करायो आहे, रुगो मुक्का डेखारण के हमलो चयो वयो।
3: की हुकूमत जो कि पंजाब में और वफाक में इस वक्त हुकूमत कर रही है, एक तो खुद मैंने पहले भी कहा कि वो तैराकी मैंडेट के जरिए वो इक्तदार पे आए और उसी की रिवायत को बरकरार रखते हुए माजी से नहीं सीखे, उन्होंने उससे बढ़ चढ़कर जो है वो उन्होंने कार्रवाई की। और उसकी मैं जो बातें कह रहा हूं ये सिर्फ एक फ्लोटिंग्स नहीं है, मैं अपनी हर एक चीज को की दलील भी सामने पेश करूंगा।
2: सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमण नून लीग के पंजाब में वफाकी हुकूमत के फॉर्म 47 तहत मिलल खैराती हुकूमत करार दे छो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे शर्जील मेमण चयो तो पंजाब ए वफाक में नवाज लीग खैराती मैंडेट जरिए इक्तदार माणियो आहे, अञा भी नवाज लीग माजी मां सिखण लाइ तैयार आना है। नवाज लीग आजाद कश्मीर में दांदली कई, कश्मीर के वोट ते धाड़ो हयो वयो। आजाद कश्मीर की चूंडन में 2024 ईस्वी वाली रिवायत के वरजायो वियो आहे। वफाकी वजीरन की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी तकबुर ते बदल हुई है।

आज़ाद कश्मीर जी आम चूंडुनि जे ॿिए मरहले में बि नवाज़ लीग मैदान मारे वरितो। 20 तकनि मां 14 ते नवाज़ लीग कामयाब। पीपल्स पार्टी रुगो 5 सीटूं हासिल करे सघी। मुज़फ़्फ़राबाद डिवीज़न जे 8 तकनि ऐं मुहाजरनि जे 12 सीटनि ते वोटिंग थी। ख़राब मौसम सबब 1 तक ते चूंड मुलतवी कई वई। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ पारां आज़ाद कश्मीर जी चूंड में नवाज़ लीग जी कामयाबी ते अॻवाणनि ऐं कारकुननि खे वाधायूं। शहबाज़ शरीफ़ चयो त कश्मीरनि नवाज़ लीग जी पॉलिसियुनि ते एतमाद कयो आहे। अमरीका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियूं अॼु थींदियूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प तस्दीक करे छॾी। डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान सां अॼु खां ॻाल्हियूं शुरू थी वेंदियूं। आबनाए हुरमज़ बाबति हिकु मुआदो मौजूद आहे। ईरान जे एटमी हथियारनि तां हथ खणण वारो मुआदो बि हासिल कयो वेंदो। माण्हू मारण नथो चाहियां, ख़बर हुई त हमले में केतिरो नुक़सान थींदो। अमरीका सां हिन वक़्तु का बि ॻाल्हि ॿोल न थी रही आहे। ओमान सां आबनाए हुरमज़ ते ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि। चिकताण में घटिताई लाइ नवां सालिस साम्हूं न आहिनि आया। ईरान ऐं अमरीका विच में पाकिस्तान ट्रैकड़ी तौर किरदार अदा करे रहियो आहे। कतर में ज़रूरत पवण ते मदद फराहम कंदो आहे। चीन छिकताण घटाइण लाइ मदद फराहम करण जी कोशिश करे रहियो आहे। ईरानी परॾेही वज़ारत जे तर्जुमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान जूं ॻाल्हियूं कंदड़ वफ़द जा सभु मेंबर ईरान में ई मौजूद आहिनि। फिलहाल कंहिं बि वफ़द जी मेज़बानी करण या कंहिंजो महिमान थियण जो इरादो नाहे। ओमान सां आबनाए हुरमज़ में महफ़ूज़ रस्ते ते ॻाल्हियूं जारी आहिनि।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
2: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
3: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे। आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
4: केश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश खबरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त केश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03-2962-435। एड्रेस टंडो गुलाम अली।
5: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टर।

0: It's 5:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: सिंध का हर चप्पा हर गोशा
4: GAFM 88 नेटवर्क से जुड़ा
3: GAFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
4: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
3: सुनते रहो GAFM 90.4।

आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: सिंध के माथे का झूमर
1: GFM 88 नेटवर्क
2: सिंध की आवाज।
1: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अब आप सुनेंगे जीए एफएम नेटवर्क पर केटीएन न्यूज।
1: दो दिन पहले एक्शन कमेटी के साथ मिलकर मैं ये कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूं, और हम इसको जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास भी जा रहे हैं, हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे, और अगर ये साबित हो तो फिर शहर में जो है वो हम रीपोल की जो है वो दरखास्त करेंगे। इन्होंने एक्शन कमेटी के साथ मिलकर वहां पे एक चौक में जो है वो हंगामा करवाया, टायरों को आग लगवाई, और जब पुलिस वहां पे पहुंची तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करवाई। पीपल्स पार्टी के वो लोग जो है वो हमारे पास उनके नाम मौजूद हैं जिन्होंने ये हरकत की है, और उस क्रॉस फायरिंग में जब एक आदमी जो है वो हलाक हो गया तो उसके बाद जो है वो पूरे शहर में खौफ हरास करी।
2: नवाज लीग अजी आजाद कश्मीर में सादी अक्सरियत हासिल करने की दावा, पीपल्स पार्टी पाबंदी मडल तंजीम से गड हंगामा करने जो इल्जाम। वफाकी वजीर अमीर मुकाम से गड प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे राणा सनाउला आजाद कश्मीर में चूंडू शफाफ माहौल में थी। आजाद कश्मीर की 45 सीटन में 23 नवाज लीग कामयाबी मानी है। मुहाजरन के 12 सीटन में भी 10 सीटू नवाज लीग खटियो। दांदली जो पिटको कंदड़ 7 सीटों में रुगो 3 सीटू खटे सकिया। वफाकी वजीर अता ताड़ चयो है नवाज लीग की कामयाबी मुखालफन का हजम न थी रही है। आजाद कश्मीर में नवाज लीग सादी अक्सरियत हासिल कर वरती है। शर्जील मेमन जहा इल्जाम बेबुनियाद, आवाम तरक्की के वोट दिनों।

अमेरिका ऐं ईरान विच में ॻाल्हियूं अॼु थींदियूं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रम्प तस्दीक करे छॾी। डोनाल्ड ट्रम्प चयो आहे त ईरान सां अॼु खां ॻाल्हियूं शुरू थी वेंदियूं। आबनाए हुरमस बाबति हिकु मुआदो मौजूदु आहे। ईरान जे एटमी हथियारनि तां हथ करण वारो मुआदो बि हासिल कयो वेंदो। माण्हू मारण नथो चाहियां, ख़बर हुई त हमले में केतिरो नुक़सान थींदो। अमरीका सां हिन वक़्त का बि ॻाल्हि ॿोल न थी रही आहे। ओमान सां आबनाए हुरमस ते ॻाल्हियूं थी रहियूं आहिनि। छिकताण में घटिताई लाइ नवां ट्रैकर साम्हूं न आहिनि आया। ईरान ऐं अमरीका विच में पाकिस्तान ट्रैकरी तौर किरदार अदा करे रहियो आहे। कतर बि ज़रूरत पवण ते मदद फराहम कंदो आहे। चीन छिकताण घटाइण लाइ मदद फराहम करण जी कोशिश करे रहियो आहे। ईरानी परदेही वज़ारत जे तर्जमान इस्माइल बकाई चयो आहे त ईरान जूं ॻाल्हियूं कंदड़ वफ़द जा सभु मेंबर ईरान में ई मौजूद आहिनि। फिलहाल कंहिं बि वफ़द जी मेज़बानी करण या कंहिंजो महिमान थियण जो इरादो न आहे। ओमान सां आबनाए हुरमज़ में महफ़ूज़ रस्ते ते ॻाल्हियूं जारी आहिनि।

0: It's 6:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: White-ish Beauty Cream Glowing Skin Jo Raaz, a product by Biocon International Pakistan.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज। GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज।
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: खूबसूरती जो असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम हिन में मौजूद विटामिन ई बीड्स एं जदीद माइक्रो बीड्स फार्मूलो अवाजी स्किन के बनाए निखरी एं चमकदार सिर्फ बिन डीहन में डार्क स्पॉट्स के करे खत्म एं दिए कुदरती असली ग्लो डी स्किन ब्यूटी क्रीम असली ग्लो हर डी जो शो अ प्रोडक्ट बाय बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान
1: امڑ سندھ جے سیندھ میں ایک چمکندڑ ستارو
2: دکھوئل انسانیت جی خدمت جو بہترین مثال
1: اما عائشہ اسپتال لوتکانی چوک ماتلی تے عورتن دے بیمارین جی ماہر ڈاکٹریانی ڈاکٹر عتیقہ سعید
2: روزانو صبح جو 10 کھا رات جو 10 بجے تائیں مریضن جو علاج کندی
1: اولاد جو نہ تھین औरतुनि जे मखसूस बीमारियुनि हई में सूर चेल में सूर रत जो घटि थियणु कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347321230
3: कैश ऐं किस्तन ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा ख़ुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
4: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतनि जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूदु आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310 31 43 842
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ा पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूदु आहे
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूदु आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
1: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
3: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
1: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
3: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
1: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
3: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
1: 03125252786
3: जी हा 2315525786
1: GAFM रेडियो नेटवर्क
3: सिंध जो आवाज़

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

चेहरे बदलते रहे, जिंदगी वैसे ही चलती रही। दुनिया बदलती है फितरतन, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। पलती रही दिल में उदासी, अंधेरों से लेके रोशनी तक, खामियों से खामोशियों तक, होश से लेके मदहोशियों तक। अफसोस नहीं के अफसाने लिखे, वो अफसाने मबनी है जिंदगी पर। खुदा तू देता है बेहिसाब, मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर। खिले ना क्यों यहाँ अब गुलाब, फिर रही बहार की कमी बस। किस्मत हमारे ही हाथ में है, उस पे इख्तियार की है कमी बस। वो लोग भी गुजर गए, वो घर भी जल चुके, वहाँ कुछ नहीं, वहाँ से अब दर्द उठे।

चेहरे बदलते रहे, जिंदगी वैसे ही चलती रही। दुनिया बदलती है फितरत है, इसमें हमारी कोई गलती नहीं। पलती रही दिल में उदासी, अंधेरों से लेके रोशनी तक, खामियों से खामोशियों तक, होश से लेके मदहोशियों तक। अफसोस नहीं के अफसाने लिखे, वो अफसाने मबनी है जिंदगी पर। खुदा तू देता है बेहिसाब, मेरे दर्द में थोड़ी तो कमी कर। खिले ना क्यों यहाँ अब गुलाब, क्यों रही बहार की कमी बस। किस्मत हमारे ही हाथ में है, उस पे इख्तियार की है कमी बस। वो लोग भी गुजर गए, वो घर भी जल चुके, वहाँ कुछ नहीं वहाँ से अब दर्द उठे। जख्म तो भरेंगे दोस्त, वक्त की मरहम में शिफा है, पर वक्त पे रहे मैं दोस्त, वो कब किसी के लिए रुका है। झुके ना सर फैले ना हाथ, हमारे अब बस यही दुआ है। कभी कभी आए सोच, जो हुआ वो ठीक ही हुआ है। सबर से सबक जो मिले हैं, सबर से अब मेरी सुलह है। कि कोई नहीं अगर तेरा तो मेरी जान खुदा है।

एक मिनट रुकी, मेरा वेट कर। ओके देन जफी भाई टेक वन। कहा तो ना माफ कीजिएगा, शालीमार गार्डन में 5:30 बजे मेरा शूट के लिए हेयर एंड मेकअप। जल्दी मेरे शेड्स ला, लेकिन पहले चेक द पैरामीटर। गानों के बढ़ते डेसिबल, चेक पे बढ़ते डेसिबल, इट्स इनक्रेडिबल। मैं इसमत झुकताई, कैसे किस्मत खुल आई। आई थिंक अबाउट दिस एट नाइट। Give a bash at the bad of the martial math, and made an instinct animalistic. Mad magician, yeah, mathematician. I never take second position. I'm getting ballistic, cataclysmic, miraculously, lick home meticulously. Dust when I made it in Nulse, love kia manica lumpse, such cola manica sumse. Rang dekho kaise badalte, dikhte hain sabke, karte kabse, baate pakki, baate kacche. I've had enough of it, but I keep going. Got no option but to keep flowing, keep the dice straight out of my zone. Chalte the sheep up, knee off of my

हैदराबाद के इलाके हाली रोड वाले इलाके में मुड़स तथा कतल थे अठ बार माओ के वारसन जो लाश रखी एहतजाज मकतूला औरत के मुड़स के गिरफ्तार करने जो मुतालबो मुजारिन मूजिब कुर्बान जुबेदा पसंद की शादी कई हुई खेन अठ बार औलाद है कुर्बान जुबेदा के बेगुनाह कतल किया है खेस गिरफ्तार किया वे।

ऐं भान सईदाबाद वेझो ॻोठ बिलावलपुर में नारी शुमाइला राहपुटो जी पुरसरार मौत वारे केस में अॻभराई। पुलिस नौजवान दिलबर राधण खे हिरासत में वठी छॾियो। पुलिस ज़रियनि मूजिबि नौजवान दिलबर राधण खां पुछा ॻाछा कई पई वञे। नौजवान जो मोबाइल फोन बि पुलिस कब्ज़े में वरितो आहे। जांच दौरान नौजवान ऐं नारीअ जो राब्तो बि साबित थियो। शुमाइला राहपुटो जे माउ इंकशाफ़ कयो त शुमाइला नौजवान दिलबर राधण सां मोहबत कंदी हुई। मोहबत में नाकामी ते हुन आपघात कयो।

0: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
1: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
0: अम्मा आयशा अस्पताल लोटकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
1: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
0: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी आई औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे
1: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधिक मालूमात लाए 2347-3141-230
2: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो मोबाइल नंबर 03002962435 एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली
3: ख़ुशख़बरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन
0: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी याद रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2301-43-842
4: ख़ुशख़बरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सिहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत
5: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
4: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
5: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे
4: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे
5: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे
4: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920
5: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली
6: छा तव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो
2: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
6: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल
2: ऐं हा ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन
6: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
2: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा
6: 03125252786
2: जी हा 2315525786
6: GAFM रेडियो नेटवर्क
2: सिंध जो आवाज़

अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो
2: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर चेल में सूर रत जो घट थियण कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2310-3143-842।
5: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
6: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
5: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
6: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
5: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
6: अव्हां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
5: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
6: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
0: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
0: सुनते रहो GFM 90.4।

नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: कराचीअ में एम क्यू एम जे ॿिनि धरणनि में गुज़िरियल ॾींहं खां जारी छिकताण ख़तम न थी। एम क्यू एम जे बहादुराबाद मर्कज़ खे सील करण लाइ पहुतल पुलिस खे मुस्तफ़ा कमाल ऐं ॿियनि वापसि मोटाए छॾियो। वफ़ाक़ी वज़ीर मुस्तफ़ा कमाल चयो आहे त काल्ह वारे वाके ते न ॻाल्हाईंदुसि, कुझु बि सील न थी रहियो आहे, सभु कुझु ठीक थी वेंदो। गुज़िरियल राति एम क्यू एम जे बहादुराबाद मर्कज़ ते ख़ालिद मक़बूल सिद्दीकी ऐं मुस्तफ़ा कमाल ग्रुप विच में झेड़ो थियो हो। अवां ॻाल्हि कयो ऐं नवां सूबा ठही वञनि, ईअं नथो थी सघे। मोहसिन नकवी अजीब ॻाल्हि कई जेका असांजे समुझ खां ॿाहिरि आहे। वज़ीर आज़म जे सलाहकार राणा सनाउला चयो आहे त मोहसिन नकवीअ जी तकरीर ॿुधी आहे, समुझ में नथो अचे त हू चवणु छा थो चाहे। नंढनि सूबनि ऐं इंतज़ामी यूनिट्स जो तरीक़ो आईन में ॾिनल आहे, पार्लियामेंट में बहस थियणु घुर्जे। कंहिंजी ॻाल्हि करण सां नवां सूबा नथा ठही सघनि। सूबनि जो मामिलो मुश्किल आहे, संजीदा माण्हुनि जी मुशावरत थियणु घुर्जे। कराचीअ में जमात इस्लामीअ जो महांगाई ख़िलाफ़ मार्च शराइ क़ाइदीन ते जमात इस्लामी औरत विंग पारां मार्च कयो वियो। जमात इस्लामी जे अमीर हाफिज़ नईम जो सुभाणे खां समूरे मुल्क में एहतजाजी रैलियूं कढण जो ऐलान। हाफिज़ नईम चयो त हुकमरान अवाम खे रिलीफ ॾियण लाइ तयार न आहिनि, तहरीक खे वधीक तेज़ कयो वेंदो। हैदराबाद में सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मेरिट जी मुबैना लताड़ ऐं करप्शन ख़िलाफ़ मुतासिर उमेदवारनि ऐं शागिर्दनि जो एहतजाज जारी। कमीशन ऑफिस आॾो क़ाइम, एहतजाजी कैंप ते सियासी समाजी अॻवाननि जी आमद। मुतासिर उमेदवारनि ऐं शागिर्दनि जी तहरीक जी हिमायत जो ऐलान। ऐं शिकारपुर भरिसां पुलिस जो मुबैना मुक़ाबलो, हिकु ॾोहारी मारिजी वियो, पंज फरार, हथियार हथ। पुलिस मूजिब शर लाड़े वटि ॾोहारनि सां मुक़ाबलो थी पियो। फायरिंग जी ॾे वटि दौरान हिकु ॾोहारी मारिजी वियो। मारिजी वियल धाड़ेल जी सुञाणप अमीर बख़्श उर्फ़ गाढ़ो कमालाणी जतोई जे नाले सां थी आहे। फरार थियल ॾोहारनि खे बि गिरफ़्तार कयो वेंदो।
1: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
2: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
3: अमर सिंध जे सींध में हिकु चमकंदड़ सितारो,
4: ॾुखोयल इंसानियत जी ख़िदमत जो बहितरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतुनि जे बीमारियुनि जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद।
4: रोज़ानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताईं मरीज़नि जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण, औरतुनि जे मख़सूस बीमारियुनि, हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घटि थियण, कमज़ोरी ऐं औरतुनि ऐं ॿारनि जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी। ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्रीकास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुशख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: ख़ुशख़बरी, अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी, टंडो गुलाम अली रोड, मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतनि जी मख़सूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा, MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी, हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रखंदा। ॿुधायो निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते ओटी लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 2101343842।
7: खुशखबरी खुशखबरी साफ़ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: उन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिणु सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबन लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली। छा अवां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
8: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
8: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
8: 03125252786।
5: जी हा, 2315525786।
8: GAFM रेडियो नेटवर्क
5: सिंध जो आवाज़।

0: It's 8:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niya Josho. A product by Biocon International Pakistan.
3: दरियाए सिंध की लहरों के संग रवां दवां, यह है मोहब्बत और यकजहती का पैगाम यहां वहां। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
4: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GAFM 90.4।

0: आप सुन रहे हैं GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: अब आपकी खूबसूरती का फैन वाइट एज ब्यूटी क्रीम।

0: मेरा फैन।
1: ब्राइट एज ब्यूटी क्रीम 5 डे ब्यूटी प्लान के साथ एलोवेरा वाइटामिन और एवोकाडो की भरपूर खूबियाँ, जिसके मिनरल्स स्किन में फुली एब्जॉर्ब हो जाए, स्किन को फेयर और फ्रेश बनाए, आपको दे बेताब निखरा चेहरा। व्हाइट एज ब्यूटी सोप से मिले चमकता निखार ताजगी के साथ। व्हाइट एज ब्यूटी क्रीम, ग्लोइंग स्किन का राज, अ प्रोडक्ट ऑफ बायोकॉन इंटरनेशनल पाकिस्तान।
2: अमड़ सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
3: डुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
2: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरियाणी डॉक्टर अतीका सईद।
3: रोजानो सुबुह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
2: औलाद जो न थियण, औरतुन जे मखसूस बीमारियन हई में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी आई, औरतुन आई बारडन जो इलाज आई अल्ट्रासाउंड कंदी आहे आई नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वने थी आई डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
3: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधिक मालूमात लाए बुड़ी 247-3141-200।
4: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खु़शख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻाइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श खोसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली। खुशखबरी,
5: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं, सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मेन जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
2: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रखंदा निज़ाम मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2301-43-843-842।
6: खुशखबरी, खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
7: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
6: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 लीटर पाणी जी बोतल,
7: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
6: हुन खां अलावा असां वटि रिफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
7: अव्हां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
6: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तक़रीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे।

0: आहे. अधिक मालूमात लाय मोबाईल नंबर 0371800392 0.
1: ऍड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वॉटर, वेझो सोनेरी बँक, बदीन रोड, मातली.
2: अपना शहर, अपना घर, मातली और मातली की आवाज़, GFM 90.4.

0: आप सुन रहे हैं DAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज। मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GAFM 90.4।

0: पाकिस्तान की शान वादी मेहरान, मेहरान की पहचान GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

0: कश्मीर के चूंडन में नवाज लीग ते नांदलन जा इल्ज़ाम मुल्कगीर तहरीक हलाने जो ऐलान बिलावल भुट्टो जरदारी पेंे बयान में चया है नवाज लीग हुकूमत जा डीह गणजी चुका है। आजाद कश्मीर में पीपुल्स पार्टी कारकुन नवाज लीग की डाढ़ जो मुकाबलो कयो ऐं शहादतू माणियो। हे शफाफ चूंड न पर कातिल इलेक्शन हुई। मीरपुर ए मुजफ्फराबाद में चोरी कयल सीटू हुननि खां वापस वठंदुसि। नवाज लीग गौर सां ॿुध संदन तव्हांजा डींहं गणजी चुका आहिनि।
1: पहले एक्शन कमेटी के साथ मिलकर मैं ये कैटेगोरिकली ये बात कह रहा हूं और हम इसको जो है वो इलेक्शन कमीशन के पास भी जा रहे हैं, हम इसकी इंक्वायरी करवाएंगे और अगर ये साबित हो तो फिर शहर में जो है वो हम रीपोल की जो है वो दरखास्त करेंगे। इन्होंने एक्शन कमेटी के साथ मिलकर वहां पे एक चौक में जो है वो हंगामा करवाया, टायरों को आग लगवाई और जब पुलिस वहां पर पहुंची तो इन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग करवाई। पीपल्स पार्टी के वो लोग जो है वो हमारे पास उनके नाम मौजूद हैं जिन्होंने ये हरकत की है और उस क्रॉस फायरिंग में जब एक आदमी जो है वो हलाक हो गया तो उसके बाद जो है वो पूरे शहर में खौफ हरास करी।
0: नवाज लीग की आजाद कश्मीर में सादी अक्सरियत हासिल करने की दावा। पीपुल्स पार्टी पाबंदी मडल तंजीम पीपुल्स पार्टी से पाबंदी मडल तंजीम से गड हंगामा करने जो इल्जाम। वफाकी वजीर अमीर मकाम से गड प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे राणा सनाउला चयो त आजाद कश्मीर में चूंडू शफाफ माहौल में थियूं आहिनि। आजाद कश्मीर के 45 सीटन में 23 ते नवाज लीग कामयाबी माणी है। मुहाजरन के 12 सीटन में भी 10 सीटू नवाज लीग खटियूं। दांदली जो पिटको कंदड़ 7 सीटन में रुगो 3 सीटू खटे सकिया। वफाकी वजीर अता ताड़ चयो है त नवाज लीग की कामयाबी मुखालफन खां हजम न थी रही है। आजाद कश्मीर में नवाज लीग सादी अक्सरियत हासिल कर वरती है। शर्जील मेमण जा इल्ज़ाम बेबुनियाद आहिन, अवाम तरक्की के वोट डिनो।
2: वो फॉर्म 47 की हुकूमत जो कि पंजाब में और वफाक में इस वक्त हुकूमत कर रही है, एक तो खुद मैंने पहले भी कहा वो खैराती मैंडेट के जरिए वो इक्तदार पे आए और उसी की रिवायत को बरकरार रखते हुए माजी से नहीं सीखे, उन्होंने उससे बढ़ चढ़कर जो है वो उन्होंने कार्रवाई की। और उसकी मैं जो बातें कह रहा हूं ये सिर्फ एक फ्लोटिंग्स नहीं है, मैं अपनी हर एक चीज को की दलील भी सामने पेश करूंगा।
0: सिंध के सीनियर सूबे वजीर शर्जील इनाम मेमण नून लीग की पंजाब ए वफाकी हुकूमत के फॉर्म 47 तहत मिलल खैराती हुकूमत करार दे छो। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कंदे शर्जील मेमण चयो त पंजाब ए वफाक में नवाज लीग खैराती मैंडेट जरिए इक्तदार माणियो है, अञा भी नवाज लीग माजी में सीखण लाय तैयार ना है। नवाज लीग आजाद कश्मीर में दांधली कई, कश्मीरन के वोट ते धाड़ो हयो वयो। आजाद कश्मीर की चूंडन में 2024 ईस्वी वाले रिवायत के वरजायो वयो है। वफाकी वजीरन की प्रेस कॉन्फ्रेंस बे तकबुर से बदल हुई।

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: सिंध के माथे का झूमर
2: GAFM 88 नेटवर्क,
1: सिंध की आवाज।
3: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़ सितारो,
4: दुखोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
3: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
4: रोजानो सुबुह जो 10 खा रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
3: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
4: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3141-230।
5: कैश ऐं किस्तनि ते प्री कास्ट RCC घरनि जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ ख़ुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरनि जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तनि ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
6: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो ॼातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण, बांझपन।
3: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़न जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी ख़िदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते OT, लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी, मोबाइल नंबर 2310-31-43-842।
7: खुशखबरी खुशखबरी, साफ ऐं शिफ़ाफ़ पाणी सेहतमंद ज़िंदगी जी ज़मानत।
8: अव्हां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो, मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड,
7: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर, 500 मिलीलीटर, 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल,
8: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
7: हुन खां अलावा असां वटि रिफल जी सहूलियत पिण सस्ते अॻिते मौजूद आहे।
8: अव्हां जे इतमाद खे क़ाइम कंदे अव्हां जी ज़रूरत जो ख़्यालु रखंदे,
7: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार, शादी ऐं ॿियनि तकरीबात लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिण मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
8: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर, वेझो सोनेरी बैंक, बदीन रोड, मातली।
3: छा अव्हां पंहिंजे कारोबार जी तरक़ी लाइ सोचे रहिया आहियो?
5: त पोइ GAFM 90.4 मातली बदीन हिकु अहिड़ो FM रेडियो आहे
3: जेको हले थो बिना ब्रेक ऐं मुसलसल।
5: ऐं हा, ॻोठनि शहरनि ऐं परे परे ताईं ॿुधो वेंदड़ रेडियो GAFM मातली बदीन।
3: बस पोइ हाणे खणो फोन ऐं पंहिंजे इश्तिहार हलाइण लाइ
5: असांजे स्टेशन मैनेजर यूनस बकारी सां हिन नंबर ते राब्तो कंदा।
3: 03125252786।
5: जी हा, 2315525786।
3: GAFM रेडियो नेटवर्क,
5: सिंध जो आवाज़।

0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
1: सुनते रहो GFM 90.4।

0: खूबसूरती का असल राज सिर्फ डी स्किन ब्यूटी क्रीम। इसमें मौजूद विटामिन ई बीड्स और जदीद माइक्रोबीड्स फॉर्मूला आपकी जल्द को बनाए निखरी और चमकदार सिर्फ दो दिन में। डार्क स्पॉट्स को करें डी स्किन ब्यूटी क्रीम, असली ग्लो हर दिन का शो।
1: अमर सिंध जे सींध में एक चमकंदड़
2: खोयल इंसानियत जी खिदमत जो बेहतरीन मिसाल।
1: अम्मा आयशा अस्पताल लोतकाणी चौक मातली ते औरतन जे बीमारियन जी माहिर डॉक्टरयाणी डॉक्टर अतीका सईद
2: रोजानो सुबह जो 10 खां रात जो 10 बजे ताई मरीजन जो इलाज कंदी।
1: औलाद जो न थियण औरतुन जे मखसूस बीमारियन हये में सूर, चेल में सूर, रत जो घट थियण, कमजोरी ऐं औरतुन ऐं बारड़न जो इलाज ऐं अल्ट्रासाउंड कंदी आहे ऐं नॉर्मल डिलीवरी पिण कई वञे थी ऐं डॉक्टर अनम सईद अल्ट्रासाउंड स्पेशलिस्ट अल्ट्रासाउंड कंदी आहे।
2: एड्रेस अमा आशा अस्पताल नोतकाणी चौक मातली। वधीक मालूमात लाइ 2347-3241-230।
3: कैश ऐं किस्तन ते प्री कास्ट RCC घरन जूं पकियूं छितूं लॻाइण लाइ खुश ख़बरी। छा अव्हां चाहियो था अव्हां जे घरन जूं छितूं पकियूं हुजनि त कैश ऐं किस्तन ते 50 साल गारंटी सां छितूं लॻरायो। सीमेंट जी जाली, ब्लॉक ऐं सस्ते में सस्ती छित लॻराइण लाइ राब्तो कंदा खुदा बख़्श होसो। मोबाइल नंबर 03002962435। एड्रेस टंडो गुलाम अली रोड मातली।
4: खुशखबरी अवां जे पंहिंजे शहर मातली में अवां जो जातल सुञातल निज़ामाणी मेडिकल सेंटर राव दिलमीर गार्डन जे साम्हूं सलीम कॉलोनी टंडो गुलाम अली रोड मातली। डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा CMH हॉस्पिटल कराची जी मशहूर डॉक्टरयाणी। औलाद जो न थियण, औरतन जी मखसूस बीमारियुनि जो इलाज ऐं ॿार जो न थियण बांझपन।
1: डॉक्टर अज़ा मुस्तफ़ा MBBS रेडियोलॉजी अल्ट्रासाउंड जी माहिर डॉक्टरयाणी हाणे रोज़ानो मरीज़नि जो इलाज कंदी। यादि रख निज़ामाणी मेडिकल सेंटर अवाम जी खिदमत लाइ 24 कलाक खुलियल रहंदो। निज़ामाणी मेडिकल सेंटर।

0: सेंटर ते ओटी लेबोरेटरी ऐं फार्मेसी जी सहूलियत मौजूद आहे। निजामाणी मेडिकल सेंटर ते नॉर्मल डिलीवरी सस्ते अघ ते कई वञे थी। वधीक मालूमात लाइ एडमिन नाना सोलंगी मोबाइल नंबर 210-31-43-842।
1: खुशखबरी खुशखबरी साफ ऐं शिफाफ पाणी सेहतमंद जिंदगी।
2: अवां जे पंहिंजे शहर मातली में सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर 1.5 साल खां ख़िदमत करे रहियो आहे। सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर एतमाद जो नालो मिनरल वाटर ओज़िनेटेड यूरिफिटेड
1: जेको पेश करे थो 330 मिलीलीटर 500 मिलीलीटर 1.5 मिलीलीटर पाणी जी बोतल
2: 6 लीटर पाणी जी बोतल ऐं ॿियूं पाणी जूं बोतलूं मुतारिफ़ कराए रहियो आहे।
1: उन खां अलावा असां वटि रीफिल जी सहूलियत पिण सस्ते अघ मौजूद आहे।
2: अवां जे एतमाद खे क़ाइम कंदे अवां जी ज़रूरत जो ख़्याल रखंदे
1: ऑफिस हुजे या घर या कारोबार शादी ऐं ॿियनि तकरीबनि लाइ हाणे असां सां राब्तो करियो। असां वटि मातली शहर वासियुनि लाइ होम डिलीवरी जी सर्विस पिणु मौजूद आहे। वधीक मालूमात लाइ मोबाइल नंबर 03718003920।
2: एड्रेस सिंध प्योर ड्रिंकिंग वाटर वेझो सोनेरी बैंक बदीन रोड मातली।
3: अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज़ GFM 90.4।

0: अजरक के रंगों से रंगी,
1: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
2: सिंध के दिल से निकली आवाज,
1: GFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।
0: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है,
1: सुनते रहो GFM 90.4।

हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।

0: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज।
1: मातली के हो तो आवाज भी मातली की है।
0: सुनते रहो GFM 90.4।

हर पहर जिंदगी की लहर GFM 88 नेटवर्क सिंध की आवाज। अपना शहर अपना घर मातली और मातली की आवाज GFM 90.4।